मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के रू हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की

0: असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। आपको हम बारंबार नमन करते हैं।
1: श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है। इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने

हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी हैं। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

सब सुख दीता राम है दूसर ना ही ना कोई, जे सुख तो चाहे सदा शरण प्रभु के लिए। अर्थात सारे सुखों को देने वाले श्री राम का नाम ही सच्चा नाम है और वो मिलता है सिमरन करने से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर्थी अनुराधा पौड़वाल, विदुषी किशोरी अमोनकर, सुरेश वाडीकर और साथियों की मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, विषय है शांति की खोज।
1: शांति के उपकरण संजोए हुए। शांति है क्या? शायद ब्रह्म की तरह इसकी भी परिभाषा कठिन है। वैसे हम नेति नेति कहकर सहज ही इस कठिनाई से मुक्त हो सकते हैं, और यदि इसे परिभाषित कर भी लें तो इस पंडिताई कसरत में मिलेगा क्या? शांति तो मिलने से रही, कारण वो कोई बाहर से पकड़कर लाने की वस्तु नहीं है। वो तो हमारे मन में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान सुप्तावस्था में है। उसे जगाना है तन मन में। जब व्यक्ति शांति का हामी होगा तो समाज स्वयं शांतिमय हो जाएगा। एक समाज शांति से रहना सीख लेगा तो ये प्रक्रिया औरों को भी अपने में संजोएगी।

0: और फिर समस्त विश्व शांति का पक्षधर होगा। ये कोई दर्शन की बात नहीं है, इतिहास सिद्ध सत्य है। किंतु आज सत्य भी समय सापेक्ष हो गया है, कारण हम पूर्ण सत्य को भूलकर केवल स्वयं को रुचने वाले उसके अंश मात्र को देखते हैं। मनुष्य के सहज स्वभाव के संबंध में अनेक सिद्धांत हैं, मत हैं। कोई उसे सरल तो कोई उसे दुराग्रही बताता है, किंतु यदि सहज मन की कल्पना करें, उसे परखें, तो पता चलता है कि मन तो एक दर्पण है। आप जैसा अपने को देखना चाहें, जैसा बने वही छवि दर्पण में उतरेगी। तो मन को यदि हम आप सब जन स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो तन मन से सरल और स्वच्छ बनना होगा। उद्वेग आवेग हमारे मन को दूषित करते हैं, उससे बचना होगा। तन मन का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ तथा सरल मन में ईश्वर का वास होता है। ये तभी संभव है जब हम ईश्वर के घर को स्वच्छ रखें, नहीं तो वे क्यों इस स्थान पर जाएंगे जहां उनका ठहरना कठिन है। तो इस प्रकार शांति एक सोच का नाम है, सोच ऐसा जो सकर्मक हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, केवल अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लिप्त न हो। गांधी जी को एक भजन बड़ा प्रिय था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने है। पराई पीर को महसूस करना, दूसरों के दुख से दुखी होना सच्ची मनुष्यता है। यदि हम इस सत्यांश को पहचान लेते हैं तो हम शांतिचित होंगे, हमारे चहुं ओर का वातावरण शांतिमय स्वयं हो जाएगा। शांति को खोजने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब लाखों लोग 2 जून की रोटी न पा रहे हों, तन पर कपड़ा न हो, सिर छुपाने को छत न हो, तो अपने कर्तव्य को छोड़कर जंगल के एकांत में शांति के क्षण खोजने वाले पलायनवादी हैं, साधु नहीं। प्राचीन समय में आदमी चौथेपन में अपने कर्तव्यों की इतिश्री करके घर छोड़ता था। एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी का मनसा वाचा कर्मा संभरण कर उसका दायित्व उसे सौंप देती थी। इसी से पीढ़ियों का संघर्ष भी नाम मात्र को था। आज की तरह धन यश लिप्सा नहीं थी, तभी इस देश में विदेह हो पाए, महलों में रहकर अनिकेत रहे पर दुख कातर। इंसान तो इंसान, जीव जंतुओं की खातिर भी अपनी आहुति देने वाले दिलीप और शिवी बने। उन्हें शांति की खोज नहीं करनी पड़ी, कारण उसे उन्होंने अपने भीतर पा लिया था। जो कुछ हमने पाना है वो बाहर से नहीं अपने अंतर से मिलेगा। खोज की प्रक्रिया अंतर्मुखी होनी चाहिए, अपने आप को जानने की, पहचानने की। बुद्ध ने कहा था, अपना दीप आप स्वयं बनो। यही सीख हमारे आपके सबके काम आएगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था शांति की खोज।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के रोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी जल बचत की तकनीकों के विषय में भैयालाल की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर एच एल राजपूत बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा के विषय में जानकारी देंगे।

दीपाली दुबे के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित विद्याधर व्यास का राग भटियार में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे गायक अरमान मलिक के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के उनके ही गाए कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा बढ़ते शहरीकरण के दौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी और 12:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे नूरी चतुर्वेदी की वार्ता जिसका विषय होगा सफल जीवन के लिए आवश्यक है सहनशीलता और विश्वास। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा सिविक सेंस भी है जरूरी। शिवप्रिया भारद्वाज के गाय भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर।

हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:30 पर सुनिएगा सूरज योगी सूर्यनाथ से काव्य पाठ। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत, चर्चा का विषय होगा सिमरते जल भंडार, हेल्थ प्लस का विषय होगा साफ पानी ताजा भोजन और हैंड हाइजीन। 6:00 क्रमेलो कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमरूद की खेती से भरपूर उत्पादन लेने हेतु वैज्ञानिक तकनीक के विषय में डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र से ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत। लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे बकरी पालन के विषय में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 6:30 पर मस्तूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे बनवारी लाल कुशवाहा की वार्ता, जिसका विषय होगा युवाओं के लिए सुनहरा अवसर अग्निपथ योजना। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा डॉक्टर भगत सिंह की वार्ता, जिसका विषय होगा शिक्षा पर हावी होता बाजारवाद। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित विश्वनाथ का रागपुरिया कल्याण में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री

राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसंग। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए हम आपको सुन पाते हैं जल की बचत तकनीकों के विषय में भैयालाल की वार्ता।
1: जल प्रकृति की देन है जो हमें जीवन प्रदान करता है। सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सारी रचना में सबसे बड़ा भाग जल का ही होता है। बिना जल के इन सभी का अस्तित्व संभव नहीं है। हमें अपने दैनिक उपयोग, फसल उगाने, पशुओं को पिलाने तथा उद्योग धंधों को चलाने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना जल के कुछ भी नहीं हो सकता है।

हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। विश्व में उपयोगी जल की मात्रा सीमित है। सारी धरती पर 140 करोड़ घन किलोमीटर जल विभिन्न रूपों में है। इसका 97.38% भाग समुद्रों में है जो खारी है। समुद्र का यह खारी जल उसी रूप में हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसके अतिरिक्त 2.01% जल बर्फीली चोटियों एवं हिमनदों में जमा पड़ा है। 10.58% भाग जल जमीन के अंदर है। 0.02% जल तालाब झीलों एवं नदियों में तथा 0.01% जल वातावरण में वाष्प के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मात्र 0.60% जल जो जमीन के अंदर तालाब झीलों एवं नदियों में है वही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसी सीमित जल से हमें सारे कार्य चलाने हैं, घरेलू उपयोग में लाना है, फसलें उगानी हैं तथा उद्योग धंधों में प्रयोग करना है, लेकिन मितव्ययता के साथ। हमारे देश में 90% से अधिक जल की खपत सिंचाई में होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र हमारे देश में है, लेकिन आज भी सिंचाई का बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। खुली और कच्ची नहरों नालियों से पानी जमीन में रिस जाता है तथा हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार वर्षा का बहुमूल्य पानी भी इधर उधर बहकर नष्ट हो जाता है। जल की इस हानि को रोकना बहुत जरूरी है। कच्ची नहरें नालियों से सिंचाई जल की हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इनको पक्की बनाया जाए या पाइप द्वारा पानी खेतों में पहुंचाया जाए। ऐसा करने से इनसे रिसाव एवं अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा होने वाले सिंचाई जल की हानि रुकेगी तथा काफ़ी मात्रा में सिंचाई जल को बचाया जा सकता है। टपक सिंचाई एवं स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग करके पानी काफ़ी मात्रा में सिंचाई जल की बचत की जा सकती है। टपक सिंचाई तकनीक बागों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सिंचाई जल को पाइप बिछाकर पौधों की जड़ क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जहां यह बूंद बूंद करके भूमि को नम करता है तथा पौधों को उपलब्ध होता है। खेतों से होने वाली वर्षा एवं सिंचाई जल की हानि को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि खेत समतल हों तथा उनकी मेड़ें मजबूत बनी हों। खेतों में ढलान होने से वर्षा एवं सिंचाई का जल तेजी के साथ ढलान की ओर बहकर नष्ट हो जाता है। खेतों से बहने वाला जल अपने साथ उपजाऊ पोषक तत्व एवं मिट्टी को भी बहा ले जाता है। इस हानि को बचाने के लिए ढाल के विपरीत जुताई करना चाहिए। 6% से अधिक ढाल वाली भूमि में वेंच टेरेस यानी सीढ़ीदार क्यारियां बनाकर ढाल को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेतों से होने वाली सिंचाई जल की हानि को बचाने के लिए सिंचाई हल्की करें। बाग बगीचों में थाला विधि से सिंचाई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खेत खुला छोड़ दें, जिससे वर्षा जल को अधिक मात्रा में सोख सके। वर्षा के मौसम में प्रत्येक वर्षा के बाद ओट आने पर खेत की जुताई करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगावें। भूमि की सतह से वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल हानि को रोकने के लिए खेतों की निराई गुड़ाई करते रहें। मल्च का प्रयोग करें। खेतों से खरपतवारों को नष्ट करते रहें। खेतों में कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट एवं हरी खाद का प्रयोग करें। भूमि पर्याप्त जीवांश होने पर भूमि की जल धारण एवं जल संरक्षण क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा जल खेतों में पड़ता है तो यह जल मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। एक स्थिति आती है, खेत और अधिक जल नहीं सोख पाता और फालतू पानी खेत से बहकर बाहर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इस फालतू पानी को वाटर हार्वेस्ट तकनीक द्वारा फार्म या खेत के उपयुक्त स्थान पर प्रक्षेत्र तालाब बनाकर एकत्रित कर लेना चाहिए। एकत्रित किए गए

0: वर्षा जल को आवश्यकता अनुसार सिंचाई में प्रयोग करें। वर्षा के बहुमूल्य जल को इकट्ठा करने के लिए गांव के तालाबों को गहरा कराएं। ऐसा करने से न सिर्फ वर्षा जल का सदुपयोग होगा बल्कि भूमि का जल स्तर भी ऊपर आएगा। सिंचाई के अतिरिक्त दैनिक एवं घरेलू कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल सामान्यतया नहाने, पीने, जानवरों को पिलाने, कपड़ा धोने, शौचालयों में एवं अन्य घरेलू कार्यों में प्रयोग लाया जाता है। दैनिक कार्यों के लिए 40 लीटर पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है, लेकिन जिन परिवारों में नल या हैंडपंप हैं वे परिवार आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद करते हैं। शौचालयों में 4 से 5 लीटर पानी एक व्यक्ति शौचालय के समय बर्बाद कर देता है। जल की इस बर्बादी को रोकना चाहिए। घरेलू कार्यों में उतना ही पानी प्रयोग किया जाए जितना आवश्यक हो। शौचालय में ऐसे पाट लगाए जाएं जो कम जल से प्रयोग से स्वच्छ हो सकें। सड़कों पर पानी के नलों का प्रयोग करने के उपरांत प्रायः उन्हें खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी अनावश्यक रूप से बहकर नष्ट होता रहता है। ऐसे नल लगाए जाएं जो प्रयोग करने के उपरांत स्वतः बंद हो जाएं। इस प्रकार जल की बचत, इन तकनीकियों का प्रयोग देश के सभी नागरिक करेंगे तो 60% से भी अधिक जल की बचत कर सकेंगे तथा पानी की कमी से होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे। हम सभी लोग जल के महत्व को समझें और अन्य व्यक्तियों को बताएं कि जल ही जीवन है। जीवन को धरा पर स्थायी बनाए रखने के लिए जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करें। प्रत्येक प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर जल की बर्बादी को रोकें।
1: कार्यक्रम खेती की बातें भी अभी आपने सुनी। जल की बचत तकनीकों के विषय में भैयालाल की वार्ता।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं संप्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सेल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं

0: उत्तर मेसिडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मेसिडोनिया व्यापार मञ्चमपि सम्बोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपतिः सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैक शततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः, संयुक्तारक्षकायुक्तः, अपरायुक्तः, उप आरक्षकायुक्तः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शन समये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः, प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः, एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह 17 चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः UPI इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के

0: संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा बास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. On the second leg of a three-nation state visit, President Draupadi Murmu has reached North Macedonia. This is a first-ever visit by an Indian president to North Macedonia. President Murmu will hold bilateral talks with a Macedonian counterpart, Gordana Siljanovsku Davkova, She will also meet the Prime Minister Hristiaan Mielskoski on of Speaker of the Assembly.

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा के विषय में डॉक्टर एचएल राजपूत की वार्ता।
1: प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बरसात ऋतु में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए। यूं तो आप और हम सभी परिचित हैं कि वर्षा ऋतु में हवा में नमी बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई आर्द्रता की वजह से बहुत सी बीमारियां, खास तौर से जो हवा जनित और पानी जनित होती हैं, वो जन्म ले लेती हैं। जैसे इस मौसम में फ्लू है, जुकाम, खांसी है, निमोनिया है, इसके लक्षण बढ़ जाते हैं। दूसरा, पानी जनित जैसे डायरिया है, उल्टी दस्त हैं, ये

बीमारियां हो जाती हैं, शरीर में अकड़न है, ये सब हवा जनित बीमारियां हैं जो कि वायरल बीमारियां होती हैं। इनके खास लक्षण होते हैं वायरस का, जिस तरह से कहीं पर भी प्रकोप होता है, शरीर में जकड़न होती है, जुकाम होता है, चिकनगुनिया और ये सब आपके लक्षण आ जाते हैं। इनके लिए इस मौसम में हमें खास तौर से ये ध्यान रखना है कि हम अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें, जो हमारे आसपास की हवा है वो शुद्ध रहे, आर्द्रता को हम बढ़ने न दें। और ये बीमारियां चूंकि हवा जनित होती हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती हैं। अगर घर में एक को इस तरह की बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो उसको आइसोलेट करें जिससे एक दूसरे को बीमारी न लग सके। जैसे किसी को फ्लू हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो उस बच्चे को या बड़े आदमी को हम साथ में न सुलाएं, दूर रखें और उससे जो छींकें आ रही हैं या है उससे थोड़ा सा बचाव करें। और किसी को दस्त है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें हमें शुद्ध पानी

0: खांसी हो गई है, तो उस बच्चे को या बड़े आदमी को हम साथ में ना सुलाएं, दूर रखें, और उससे जो छींकें आ रही हैं या है उससे थोड़ा सा बचाव करें। और किसी को दस्त है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें हमें शुद्ध पानी, पानी की सफाई के साथ उसको पानी कराएं और प्रचुर मात्रा में पानी दें। और जो घरेलू इलेक्ट्रॉल बना लेते हैं हम, नमक और नींबू पानी का घोल मिला करके उसका सेवन कराएं। तीसरी जो इसमें होती है, शरीर में अकड़न है, चिकनगुनिया है, उसके लिए भी शुरू में अपना शरीर को जितना हो सकता है आइसोलेट करके रखें, और जब लगे कि परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है तो निकटतम चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, इस मौसम में एक बात और खास ध्यान रखनी है कि हमें पानी या बासी खाना इसका कतई इस्तेमाल न करें, जिससे जैसे मान लीजिए खाना बच रहता है, हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें फंगस लग जाती है, उससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब हो जाती हैं। दूसरा, जिस आदमी को जैसे मैं पहले कहा फ्लू हो रही है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए उसके रुमाल, उसका बिस्तर, उससे हाथ मिलाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि इस मौसम में हम पानी की जो बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री हो रही है, हमें स्वच्छ पानी, पानी को उबाल करके बच्चों को, बड़ों को, सभी को देना चाहिए। खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब बीमारी बढ़ जाए तो हमें निकटवर्ती डॉक्टर से जल्दी अपनी सलाह लेकर के इलाज शुरू करा दें। दोस्तों, अगर हम बचाव करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इन मौसम में जो कि बीमारियां हैं उससे अपने को बचा के रखें। साथियों, जैसा आप जानते हैं, बरसात ऋतु में हर जगह गंदगी बढ़ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इस ऋतु में मच्छर भी पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया और चिकनगुनिया ये सब हो जाते हैं। चिकनगुनिया यूँ तो वायरल बीमारी होती है, लेकिन एक विशेष प्रकार के मच्छरों से होती है, जो कि आम घरों में, छतों पे, कूलर में पानी जो पुराना इकट्ठा हो जाता है उस पे जन्म लेते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चीज़ की सफाई का विशेष ध्यान रखें कि घरों के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, कूलर में या कोई टूटे फूटे बर्तन हैं उनमें बहुत इकट्ठा हुआ काफ़ी समय का पानी न रहे, और मच्छरों से अपने को बचाव करें, मच्छरदानी लगा कर करें, क्योंकि ये मौसम चिकनगुनिया और मलेरिया का शुरू होने वाला। साथ में ही जब गंदगी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे खान पान का भी थोड़ा सा स्तर नीचे चला जाता है, और हमें टाइफॉइड है जिसको कि हम म्यादी बुखार कहते हैं, उसके भी बहुत मरीज इस मौसम में होने लगते हैं। इसके लिए हमें पानी उबाल करके पीना चाहिए, बासी खाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो भी हम खाना खा रहे हैं गर्म करके और शुद्ध खाना होना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा के विषय में डॉक्टर HL राजपूत की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए संदेश स्वर में ये देशगान।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कल विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। एक रिपोर्ट।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य

0: यदि शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। श्री मोदी ने सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
2: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है और मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बारिश से पैदा हुई सूखे की समस्या और कुछ स्थानों पर अतिवर्षा से संभावित बाढ़ की चुनौती को लेकर कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ हो या सूखा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसल और आम जन की आजीविका की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री योगी ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ही राहत और बचाव की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जन कल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए युवाओं से कम एक कौशल सीखने की अपील की।
3: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प ले कि कम से कम एक कौशल सीखकर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश बल्कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा। श्री योगी ने युवाओं को याद दिलाया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित होने की राह पर अग्रसर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जाँच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जाँच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा

0: व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन कराया जाएगा।
1: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम पे डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कांवड़ के श्रद्धालु हैं उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि के साथ संवाद रहे, लेकिन
0: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको डिप्टी एसपी और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आज वहां कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा, अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। केंद्रीय हिंदी संस्थान के स्वदेशी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग का बुधवार को अंतिम दिन है। ऐसे में जिस भी छात्र का नाम चयन सूची में शामिल है, वह समय पर संस्थान में पहुंचकर प्रक्रिया में शामिल हो जाए। जिन छात्रों का नाम सूची में आया है, उनके लिए कल यानी कि बुधवार को अंतिम मौका है। निर्धारित समय के भीतर काउंसलिंग में शामिल नहीं होने पर उनकी सीट पर दावा समाप्त हो जाएगा। काउंसलिंग पूरी होने के बाद खाली बची सीटों का आंकलन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण की कार्यवाही की जाएगी और आवश्यकता होने पर अगली सूची भी जारी की जाएगी। कल यानी कि बुधवार की शाम तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी।

आगरा वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पायल्स फिशर फिस्टुला की अत्याधुनिक लेजर विधि से सर्जरी की सुविधा शुरू। जी हाँ श्रोताओं, सोमवार को पहली लेजर सर्जरी एसएन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए इन बीमारियों में लेजर सर्जरी के नतीजों पर 3 वर्ष तक का शोध भी किया जाएगा। श्रोताओं, बदली जीवन शैली फास्ट फूड के सेवन से पायल्स फिशर फिस्टुला की समस्या बढ़ती जा रही है। इन मरीजों में सामान्य सर्जरी के नतीजे अच्छे नहीं हैं, कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से निजी अस्पतालों में लेजर से पायल्स फिशर फिस्टुला की सर्जरी की जाती है। अब एसएन कॉलेज में भी ये सुविधा शुरू हो गई है। सर्जरी लेजर से सर्जरी के बाद मरीजों को 24 घंटे बाद छुट्टी कर दी जाएगी, इससे दर्द भी बहुत कम होगा। श्रोताओं, कॉलेज में मरीजों के लिए अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही शोध कार्य की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। अगर लेजर सर्जरी की बात करें तो ये परंपरागत सर्जरी बहुत कम दर्द इसमें होता है। इसके साथ साथ बहुत कम खून बहता है और ऊतकों की कम क्षति होती है। तेज रिकवरी के साथ सामान्य दिनचर्या में मरीज जल्दी वापस कर सकते हैं। इसके साथ साथ संक्रमण और खांसी जैसी दिक्कतों की संभावनाएं कम होती हैं। साथ ही अस्पताल में कम समय तक भर्ती रहने की जरूरत होती है। ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग और देखभाल भी आसान है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, कार्यक्षमता की वापसी तेजी से होती है। तो अब जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा शुरू कर दी गई है।

परीक्षार्थियों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने एमएड और एलएलएम का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। एमएड द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2025-27 और चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2024-26 की मुख्य पुनः परीक्षा और भूतपूर्व छात्रों की परीक्षा 4 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र प्रणाली पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को किन्हीं 80 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दोपहर 1 से 3 बजे की पाली में होगी। इसके साथ साथ एलएलएम प्रथम वर्ष सत्र 2023-27 के नियमित भूतपूर्व और पुनः परीक्षा और एलएलएम अंतिम वर्ष सत्र 2022-24 की परीक्षा 4 से 12 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। आगरा कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 1 बजे की पाली में होंगी और वहीं प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दोपहर 2 से शाम 5 बजे की पाली में होंगी।

श्रोताओं, प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के लाखों प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि गृहकर, जलकर और सीवर कर बकायेदारों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। सभी नगरीय निकायों में पहली बार एक मुश्त समाधान योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में ये योजना लागू होगी। इस योजना के तहत गृहकर, जलकर और सीवर कर के बकायेदारों को केवल मूल पर राशि जमा करनी होगी। ऐसा करने पर उस पर लगे ब्याज और सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। हालांकि ये छूट तभी मिलेगी जब पूरा मूल बकाया जमा कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकायों पर देने का निर्णय लिया गया है। इसमें आवासीय, व्यवसायिक और मिश्रित उपयोग की सभी संपत्तियां शामिल होंगी। अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर कम से कम 1/3 मूल बकाया जमा करना होगा, जबकि शेष राशि 2 मासिक किस्तों में जमा करनी होगी। 3 माह में पूरा भुगतान अनिवार्य रहेगा। ओटीएस योजना का संचालन 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक प्रचार प्रसार और बकायेदारों को सूचना देने का अभियान भी चलाया जाएगा।

शदौ शहर के ताजगंज जोन के अंतर्गत आने वाले कई प्रमुख इलाकों में अगले दो दिनों तक पानी की सप्लाई आंशिक रूप से बाधित हो सकती है। नमामि गंगे परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों के चलते जलकल विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहने की अपील की गई है, ताकि वो समय रहते पानी का उचित भंडारण कर सकें। ताने वाले खैरात इलाके गेट पर नमामि

की योजना से जुड़ा विशेष कार्य 21 जुलाई को निर्धारित किया गया है। इस तकनीकी और निर्माण कार्य के परिणाम स्वरूप दो दिनों यानी कि 22 और 23 जुलाई को जलापूर्ति पर असर पड़ेगा। पाइप और अन्य आधारभूत संरचनाओं पर काम चलने के कारण निर्धारित समय पर सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। श्रोताओं, ऐसे में पेयजल की ये आंशिक किल्लत ताजगंज जोन के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी। जिन प्रमुख इलाकों और मोहल्लों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी उनमें रकाबगंज, पालूगंज, छिपीटोला, ताजगंज, इंदिरा कुंज, हन्ना गली, विभव नगर, नौलखा सदर, बिंदुकचा और मधुनगर क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर निवास करने वालों को ये सलाह दी जाती है कि वो इन दो दिनों के लिए पानी का अतिरिक्त भंडारण कर लें ताकि दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। श्रोताओं, नागरिकों की परेशानियों को विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकरों के जलापूर्ति करने का इंतजाम भी किया है, यानी कि आप इन दो दिनों के पर्याप्त पानी भी और पानी को बर्बाद न करें। बहुत किफ़ायत से, बहुत ध्यान रखकर आपको इन दो दिनों तक पानी का इस्तेमाल करना होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए नगर निगम ने टैंकरों की व्यवस्था की है। जिन क्षेत्रों में पानी की अधिक व्यवस्था होगी या संकट गहराएगा वहां विभाग के टैंकर पहुंचेंगे। यदि किसी नागरिक को पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है या उन्हें टैंकर मंगाने की आवश्यकता है तो वो जलकल विभाग के आधिकारिक नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको ये नंबर नोट करवा दें। टोल फ्री नंबर है 1800-270-2722 और कंट्रोल रूम का नंबर है 8192095401। घबराइए नहीं, इन नंबरों का आप पुनः मिलान कर लें। टोल फ्री नंबर है 1800-270-2722 और दूसरा नंबर है 8192095401। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी, तो पुनः आपसे अपील है कि आप इन दो दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें और पानी का बहुत ध्यान रखकर इस्तेमाल करें।

और अब मौसम संबंधी सूचना सुनिए। ताज नगरी में सोमवार से मानसून की दूसरी पखवाड़े का भीगा फागा आगाज हो गया। दिन भर बादल छाए रहे, बीच बीच में बूंदे भी झड़ती रही। मौसम पहाड़ों सलीखा हो गया। तापमान में एक साथ 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। करीब 15 दिनों तक गर्मी और उमस झेलने के बाद सोमवार को बादल मेहरबान हुए। सुबह से घने घने काले काले बादल छा गए। सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा, साथ ही कहीं रिमझिम और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला भी चलता रहा। देर शाम तक कई स्लैब में बूंदाबांदी होती रही। इससे तापमान में भारी गिरावट आई। अधिकतम तापमान रविवार की अपेक्षा करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुद्ध मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान आकाशीय बिजली गरजने या गिरने की आशंका भी है। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है। 24 जुलाई से बादल फिर हल्के पड़ सकते हैं, लेकिन दिन में एक या अधिक बार हल्की बारिश हो सकती है। तो कार्यक्रम आसपास में सूचनाएं यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आइए सुनते हैं कि एक गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। ज्योति पत्नी कमल किशोर निवासी ग्राम फरौली थाना सहावर जनपद कासगंज से दिनांक 9 जून 2026 से लापता है। ज्योति की उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट, चेहरा लंबा और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय ज्योति ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ज्योति के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सहावर कासगंज के पते पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार मोहम्मद अशरफ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कनोई थाना सहावर जनपद कासगंज से दिनांक 6 जून 2026 से लापता है। अशरफ की उम्र 45 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, चेहरा गोल और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय अशरफ ने सफ़ेद शर्ट, हल्का गुलाबी लोअर और नीली चप्पल पहनी हुई थी। अशरफ के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सहावर कासगंज की पति पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार रचना देवी पुत्री रामवीर सिंह निवासी ग्राम अहलादपुर थाना गंज डुंडवारा जनपद कासगंज से दिनांक 7 जून 2026 से लापता है। रचना की उम्र 28 वर्ष, कद 4 फुट 9 इंच और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय रचना ने साड़ी पहनी हुई थी। रचना के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना गंज डुंडवारा कासगंज के पते पर सूचित करें।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। आगरा रेल मंडल की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए 23 जुलाई से यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कैंप लगाया जाएगा। श्रोताओं, ये शिविर 31 जुलाई तक उत्तर मध्य रेलवे संस्थान आगरा छावनी में आयोजित होगा। इसमें रविवार को अवकाश रहेगा। इस दौरान कर्मचारी अपने UMID कार्ड, HRMS प्रोफाइल, लॉगिन, पेंशन और कई संबंधित शिकायतों का निदान करवा सकते हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरे समय मौजूद रहेंगे। रेल प्रशासन ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अपील की है कि वो निर्धारित तिथियों में कैंप में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपनी लंबित समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाएं।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए सोचना है। कानपुर टुंडला रेलखंड में नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और चौथी लाइन को जोड़ने का कार्य इसी माह होगा। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों को देरी से चलाया जाएगा। 29 जुलाई को बीकानेर खावड़ा एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से 2.5 घंटे देरी से रवाना होगी। इसके अलावा आनंद विहार पुरी, आनंद विहार कामाख्या, गोरखपुर ओखा, सुबेदारगंज, श्री माता वैष्णो देवी कटरा सहित कई ट्रेनों का 90 से लेकर 150 मिनट तक रीशेड्यूल किया गया है। साथ ही 21 से 30 जुलाई के बीच कई ट्रेनों का अलग अलग स्थानों पर 30 मिनट से लेकर 120 मिनट तक रेगुलेशन भी किया गया है। तो जो लोग इन ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं वो स्थिति जानकर ही सफर करें। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस की दिल्ली में परेड को लेकर रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के सभी स्टेशनों के लिए किसी भी तरह का पार्सल बुक नहीं किया जाएगा।

वहीं 13 से 15 अगस्त के बीच लाल किला के आसपास ट्रेनों की सीटें नहीं बजाई जाएगी। आयोजन के बाद व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी। आगरा रेल मंडल से हर दिन 5,000 पार्सल की बुकिंग होती है। नई दिल्ली आगरा रेलखंड पर हर दिन 2 दर्जन से अधिक पार्सल ट्रेनें चलती हैं। रेल मंडल में हर दिन 5,000 पार्सल की बुकिंग होती है। इसमें 2,000 पार्सल की बुकिंग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, 2,000 मथुरा और 1,000 आगरा किला स्टेशन में पार्सल बुकिंग होती है। 15 अगस्त को लेकर रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 12 से 15 अगस्त तक पार्सल की बुकिंग नहीं होगी। न्यूज़पेपर मैगजीन इसके दायरे से बाहर होंगी। 16 अगस्त से पार्सल की बुकिंग फिर से शुरू होगी। सभी पार्सल कार्यालयों में नोटिस भी लगा दिए गए हैं। पार्सल बुकिंग पर रोक और लाल किला के आसपास इंजन की सीटी न बजाने के आदेश का पालन भी सख्ती से करवाया जाएगा।

श्रोताओं, हम आपको पुनः बता दें, जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकर मंगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-270-2722 और कंट्रोल रूम के नंबर 8192095401 पर आप संपर्क कर सकती हैं। इन नंबरों का मिलान कर लें। टोल फ्री नंबर है 1-800-270-2722 और दूसरा नंबर है 8192095401। रेलवे ने नई दिल्ली कोसीकला ईएमयू ट्रेन का धौलपुर तक विस्तार किया है। नई दिल्ली कोसीकला दैनिक ईएमयू प्रतिदिन धौलपुर तक जाएगी और वापसी में धौलपुर से चलेगी। ये ट्रेन 12 कोच की होगी और यात्री जनरल टिकट लेकर इसमें यात्रा कर सकते हैं। और आज की इन्हीं सूचनाओं के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगे। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
3: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन

0: आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति

0: से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
3: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving

0: active campaigns at the FIH Youth Hockey 5S Asian Championship 2026 in Muscat, Oman yesterday. The Indian women's team was the first to start its campaign on the tournament's opening day against Kazakhstan and won 8-3. The Indian men's team, on the other hand, also impressed in its tournament opener as they defeated Bangladesh 7-3 in their opening match. Chirag Jha, Sports Desk.
1: And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Abhishek. Prime Minister urges Parliament to embrace dialogue over disruption, leads the Statesman. Monsoon session off to a stormy start amid opposition protests, reports the Hindu. The Pioneer, in its editorial piece, FIFA World Cup, Spain rules the world again, says football once again demonstrated its unrivaled global appeal, uniting nations, cultures and generations in a way few events can. Cops block protesters march to Parliament, Nadda meets CJP representatives, says the Times of India. Andy Burnham takes over as Prime Minister, unveils 10-year plan for reset of United Kingdom, informs the Asian Age. And finally, India proves first vaccine against dengue, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with the North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches first strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open badminton tournament beginning today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाउकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका यह दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और

0: शर्की यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फ़रोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद वसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज MV गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने यह बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाजों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाजों की आजादाना नकलो हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिल मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और मुतासिर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि पनामा लातीनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाजा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़राअत, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अलाक्वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वजीर खारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा जिससे दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क्लीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवायद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है जिसका मकसद डाक के जरिए वोट डालने के अमल को मजीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक्वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक्वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम

0: 24 इंतखाबी जिलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहिरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निजाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधही की रोकथाम, ऑडिट के निजाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निजाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निजाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम अज कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल है। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए ईरान को जबरदस्त

0: अमी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिए अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के शब्द रचना। स्वाति कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म थी चमत्कार। साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है एक बार फिर से कुमार सानू और अलका याग्निक के जुगल स्वरों में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है अनु मलिक, फिल्म का नाम खिलाड़ी तू अलाड़ी।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना। स्वर्थी कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म थी गुलाम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मेजर साहब से स्वर है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की गीत का है आनंद राज आनंद देव कोई

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर, संगीतकार है AR रहमान। फिल्म का नाम है पुकार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए देवरिया और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का।
2: एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ कृषि मंत्री श्री प्रताप साहू द्वारा नगर पंचायत बरियारपुर क्षेत्र में पौधरोपण कर किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों समेत सरकारी भवनों के परिसरों में पौधे लगाए गए। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने गांव, खेत, बागीचे, मंदिर, तालाब, अमृत सरोवरों एवं सड़क के किनारे आदि सजीव वृक्ष लगाने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों में पौधे भी वितरित किए गए। इसके अलावा जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों, चरागार भूमियों एवं तालाबों के तटबंधों सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी भूमियों पर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के जिले के नामित नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार प्रथम तथा जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बैतारपुर विकासखंड के सृजन ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण करते हुए आम जन से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उसका संरक्षण करते रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग के सभी परिसरों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन आदि पर पौधरोपण किए। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने महर्षि देवराहवा बाबा सोसा से राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ट्रामा सेंटर चालू करने का भी निर्देश दिया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के लिए जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पारदर्शी पूर्वक तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी पूर्वक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में चयनित आकांक्षी ब्लॉकों को निर्धारित पैरामीटर के तहत संतुलित करने के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को डिजिटल हाजिरी कक्षा में निपुण तालिका, शिक्षक संदर्शिका, पठन पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का व्यापक व्यवस्था करते हुए पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा
3: सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग में अब जुलाई महीने में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पे बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया जाए। उसके साथ साथ बच्चों को निपुण भी बनाया जाए, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में और स्ट्रेंथन करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है।
2: जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ समय पूर्व सभी तैयारियों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़ के मद्देनजर सभी आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। बाढ़ विभाग व अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य योजना तैयार कर रखते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन करें। मार्ग दुर्घटना में हो रही जनहानि को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा की। दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि न हो इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। बार बार सड़क दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित करते हुए वहां पर आवश्यक संकेतक तथा अन्य

0: रक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए। सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविर का आयोजन जिले के विभिन्न तहसीलों में किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पात्र लाभार्थियों में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र व अन्य उपकरण वितरित किया गया। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व विभागीय योजनाओं की प्रगति का प्रतिबिंब है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही छब नहीं होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, हेपेटाइटिस बी आज के टीकाकरण, आशाओं का लॉजिस्टिक वितरण, BHND सत्रों तथा मशीन डिलीवरी सहित प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान का क्रियान्वयन पूरी तरह से किया जा रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है तथा लक्षणयुक्त रोगियों को चिन्हित करते हुए उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इलाज कराने का सलाह दिया जा रहा है। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुधाकर मणि ने बताया कि
1: आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घरों के भ्रमण कर लक्षण युक्त रोगियों को चिन्हित कर रही हैं तथा कुपोषित बच्चों का भी सूची तैयार किया जा रहा है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर और अन्य आगे की जाँच के लिए संदर्भित किया जाता है।
2: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
3: जनपद कासगंज में 12 जुलाई को वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधे लगाए। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत जनपद कासगंज को 26,51,800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। वक्ताओं ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। जनपद कासगंज में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्षा जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा भूजल पुनर्भरण जैसे प्रभावी उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भूजल संरक्षण, उसके नियोजित विकास, विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाने के प्रति आम जन को जागरूक करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह की थीम है जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। अभियान के अंतर्गत जनपद की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में 7 दिवसीय सघन जल संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा भूजल संवर्धन और जल संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की जा रही है। इस विषय पर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्त्री पारुल बंसल ने कहा,
4: मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करें, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकें और अपने आसपास जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा रखने में अपना योगदान दें।
3: जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। 18 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में धारा 138 NI एक्ट से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया जिसमें 4 मामले मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। कासगंज में आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

0: इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा गंगा नदी के लहरा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, खतरे के संकेतक, नावों, गोताखोरों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ एवं रबी वर्ष 2026 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज अभियान तथा जनपद स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन पात्र किसानों के पास अभी तक केसीसी नहीं है, उनकी पहचान कर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक शाखाओं, पैक्स, एफपीओ और कॉमन सर्विस सेंटर के समन्वय से विशेष अभियान चलाकर उन्हें केसीसी से जोड़ा जाए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम की मंजूषा।

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार है मजहर सुल्तानपुरी, संगीतकार है आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है कुदरत।

डरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ बैठे।

नौशांत के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे शकील बदायूनी की शब्द रचना। स्वाति लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म थी लीडर। और अब लीजिए सुनिए फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत।

लता मंगेशकर के गायक इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अग्नि भी संभव होता है। मीडियम 1 8530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दीपाली दुबे के गाए कुछ लोक गीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सर सरिता।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना। सोनू निगम और श्रद्धा पंडित के जुगल स्वरों में गीतकार थे समीर। फिल्म का नाम था संघर्ष।

और अनीजे सुनिए वजीर फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। गीतकार हैं विधु विनोद चोपड़ा, संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

इस गीत में स्वर थे सोनू निगम और प्रकृति कक्कड़ के, गीतकार थे कुमार और संगीतकार थे अमाल मलिक। फिल्म का नाम था अजहर।

साथियों, शिवाय फिल्म से अभी आप सुन रहे थे कैलाश खीर को। गीत गाते सईद कादरी, संगीतकार थे मिथुन। और अब लीजिए सुनिए फिल्म मिकी वायरस से अरिजीत सिंह को। गीत और संगीत निर्देशन है हनीफ शेख का।

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड, स्वर है मिथुन अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति के, गीतकार है मनोज मुंतशिर, संगीतकार है मिथुन।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं पंडित विद्याधर व्यास का राग भटियार में ख्याल कायम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विद्याधर व्यास का राग भटियार में ख्याल गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन 5 पर।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक प्रमुख भारतीय पार्श्व गायक और संगीतकार हैं। मुंबई महाराष्ट्र के एक संगीत घराने से ताल्लुक रखने वाले ये कलाकार मशहूर संगीतकार सरदार मलिक के पोते और डब्बू मलिक के बेटे हैं। इनके बारे में आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इनकी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक अरमान मलिक की। अरमान मलिक एक भारतीय प्लेबैक सिंगर, संगीत लेखक, रिकॉर्ड निर्माता, डांसर और अभिनेता। वे हिंदी सिनेमा के अलावा कन्नड़, तेलुगु सिनेमा में भी गाने गाते हैं। अरमान को हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मलयालम सहित कई भाषाओं में गायकी के लिए जाना जाता है। साल 2006 में उन्होंने सारेगामा लिटिल चैंप्स में भाग भी लिया था, लेकिन वे 8वें स्थान पर इस शो से बाहर हो गए। लेकिन संगीत का जो सफर था वो बरकरार रहा। अरमान मलिक का जन्म 22 जुलाई 1995 को मुंबई में हुआ। वे एक संगीत वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार सरदार मलिक के पोते और अनु मलिक के भतीजे हैं। उनके पिता का नाम डब्बू मलिक है और संगीत में परिवार होने के कारण उन्हें बचपन से संगीत से बेहद लगाव रहा। महज 8 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में अरमान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से संपन्न की। उन्होंने उनके संगीत शिक्षा के दौरान बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक बोस्टन की ओर से फुल टाइम स्कॉलरशिप भी ली, यानी कि उन्हें इस स्कॉलरशिप से नवाजा गया। फिलहाल वह उषा परवीन गांधी कॉलेज ऑफ

मैनेजमेंट से बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने माय नेम इज़ खान में इंग्लिश बॉय के किरदार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। गायकी के अलावा वे अपने संगीतकार भाई अमाल मलिक के साथ फिल्म जय हो के गाने भी गा चुके हैं। 10 साल तक रीता कौल और कदीर गुलफाम मुस्तफ़ा खान से क्लासिकल संगीत की शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण करी है। अरमान के बारे में और भी बातें हम लगातार आपसे करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक और गीत का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक अरमान मलिक की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्ष 2006 में उन्होंने

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक अरमान मलिक की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्ष 2006 में उन्होंने सारेगामा लिटिल चैंप्स में भाग लिया, लेकिन सातवें राउंड में वे बाहर हो गए। उस समय वे महज 9 साल के थे। शुरू में उनका यह सपना था कि वे एक होटल के मालिक बने और साथ ही संगीत को जारी भी रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने संगीत को ही अपना करियर चुना। वर्ष 2008 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला, जहां उन्हें बॉलीवुड बिग स्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ मेरी बॉडी गाना गाने का मौका मिला। यह गाना उन्होंने फिल्म भूतनाथ के लिए रिकॉर्ड किया था। बतौर बाल सिंगर के रूप में उनकी ये पहली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ थी। इसके बाद उन्होंने पहला गाना सलमान खान की फिल्म के लिए तुमको तो आना ही था गाया। अरमान का एक एडल्ट सिंगर के तौर पर ये बॉलीवुड में डेब्यू माना जाता है। अरमान मलिक ने अपने छोटे से सिंगिंग करियर में कई फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। उन्होंने अब तक लगभग 100 से 200 कमर्शियल एड में भी अपनी आवाजें दी हैं। अरमान मलिक ने लंदन के बेम्बली थिएटर में लाइव परफॉर्म करने वाले सबसे कम उम्र के बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के रूप में भी अपनी जगह बनाई है। मैं रहूं या ना रहूं गाने से अरमान मलिक को एक अलग ही प्रसिद्धि मिली। इस गाने को उनके भाई अमाल मलिक ने कंपोज किया था। इनके बारे में और भी बातें आपके साथ लगातार जारी, लेकिन फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गायक अरमान मलिक की। अरमान मलिक के बारे में आज हमने आपसे काफ़ी सारी बातें साझा करी, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर में गायकी के लिए सबसे ज़्यादा गाने तो गाए हैं, लेकिन 2011 में आई फिल्म कच्चा नींबू में अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा था। उन्होंने कई किरदारों को अपनी आवाज़ भी दी, जिसमें द लायन किंग 2019 में जो आई थी के हिंदी संस्करण के लिए गायन और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्मों में डबिंग करना भी शुरू किया। प्रमुख पार्श्वर्य गायन प्रस्तुतियां अरमान ने, अगर इनकी बात की जाए तो अरमान ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सिनेमा को कई बड़ी हिट फिल्मों में पार्श्वर्य गायक के रूप में भी बॉलीवुड में प्रसिद्धि दिलाई है। उनके कुछ सबसे प्रमुख फिल्मी गीतों में अगर हम बात करें तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, दे दे प्यार दे, चले आना कबीर सिंह, पहला प्यार जय हो फिल्म से, और तुमको तो आना ही था 2015 में जो फिल्म आई थी मैं हूँ तेरा, मैं हूँ हीरा हीरो तेरा, ये फिल्में थी। बॉलीवुड में अरमान मलिक की अपनी एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, और वो लगातार निखरता जा रहा है, और आने वाले समय में अरमान मलिक एक शानदार उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा बनके हम सबको नजर आएंगे।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम आज के कलाकार में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करने वाले हैं, बढ़ते शहरीकरण के दौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक क्यों। सवाल बहुत बड़ा है ना, लेकिन जवाब उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और इस जवाब को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ना पड़ेगा। ये एक आश्चर्यजनक सत्य है कि भारत में वर्षा के मौसम में एक क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति होती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में भयंकर सूखा होता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं और कई जगह संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमने अपने प्रकृति प्रदत्त अनमोल वर्षा जल का संचय नहीं किया, वह व्यर्थ में बहकर दूषित जल बन गया। और वहीं दूसरी ओर मानवीय लालसा के परिणाम स्वरूप भूजल का जो हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, परंतु धरती से निकाले गए इस जल को वापस धरती तक लौटाने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। इस भूजल स्तर पर गिरा हुआ जल और भीषण जल संकट जो पैदा हो रहा है, उसके लिए एक अनुमानित विश्वभर है जो लगभग 1.4 अरब लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। प्रकृति ने अनमोल जीवनदायी संपदा जल को हमें एक चक्र के रूप में दिया है। आगे भी बातें समझेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, लेकिन पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं बढ़ते शहरीकरण के दौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक क्यों। अभी हमने आपसे बात की थी कि जब प्रकृति ने अनमोल जीवनदायी संपदा जल को हमें एक चक्र के रूप में दिया है, मानव इस जल चक्र का अभिन्न अंग भी है। इस जल चक्र का निरंतर गतिमान रहना अनिवार्य है। प्रकृति के खजाने से जो जल हमने लिया है उसे हमें वापस भी लौटाना होगा, क्योंकि हम स्वयं जल नहीं बना सकते। हमारा दायित्व है कि हम वर्षा जल का संरक्षण करें तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं और किसी भी कीमत पर पानी को बर्बाद ना होने दें। जल संकट को लेकर पूरा विश्व समुदाय चिंतित है, परंतु इस समस्या के हल के लिए सभी स्तरों पर पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है। जल संकट को लेकर हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, इससे निपटना जरूरी है, क्योंकि हमारा आज कल सुरक्षित तभी रहेगा जब हम इस संकट के बारे में सोचेंगे। इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके भी हैं, जिनमें सबसे कारगर तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, यानी कि वर्षा जल का संचय एवं संग्रह करके इसका समुचित प्रबंधन एवं आवश्यकता अनुसार आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण जो सृष्टि का हित है, क्योंकि जमीन के भीतर जो पानी संचित किया जाएगा उसका इस्तेमाल हम भविष्य में भी कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रकृति से लिया है फिर प्रकृति को हमें वापस लौटाना भी है। वर्षा जल एक अनमोल प्राकृतिक उपहार है जो प्रतिवर्ष लगभग

पूरी पृथ्वी को बिना किसी भेदभाव के मिलता है, परंतु समुचित प्रबंधन के अभाव में वर्षा जल व्यर्थ में बहता हुआ नालों में होता हुआ समुद्र के खारे पानी में मिलकर खारा बन जाता है। वर्तमान जल संकट को दूर करने के लिए वर्षा जल संचय ही एकमात्र विकल्प है। यदि वर्षा जल के संग्रहण को समुचित व्यवस्था हो तो न केवल जल संकट से जूझते शहर अपनी जरूरतों के लिए पानी जुटा पाएंगे, बल्कि इससे भूजल भी रिचार्ज हो सकेगा। अतः शहरों के जल प्रबंधन से वर्षा जल की हर बूंद को सहेज कर रखना बेहद जरूरी है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचय की परंपरा थी और वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए लोग प्रयास भी करते थे। इसलिए वो कई बार आपने सुना होगा कि कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियां आदि पानी से भरे रहते थे। इससे भूजल स्तर भी ऊपर हो जाता था और सभी जल स्रोत रिचार्ज हो जाते थे। परंतु मानवीय उपेक्षा, लापरवाही, औद्योगिकरण और नगरीकरण में ये जो कारण रहे, जल स्रोत मृत प्राय हो गए। कई जल स्रोत तो कचरे के गड्ढे के रूप में बदल गए और कई जल स्रोत पर अवैध कब्जे हो गए। मिट्टी और गाद भर जाने से उनकी जल ग्रहण की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। समय के साथ साथ वे टूट फूट गए और अभी भी समय है कि इनमें से कई परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके उन्हें बचाया जा सकता है। वर्षा जल के संचय से इन जल स्रोतों को सजीव बनाया जा सकता है। तो सोचिए और इस पर अमल कीजिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और अभी हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संरक्षण पर, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इतिहास काफी पुराना है। विश्व विरासत में सम्मिलित जॉर्डन के पेट्रा में की गई पुरातत्विक खुदाई में ईसा पूर्व 7वीं सदी में बनाए गए ऐसे हौज निकले जिनका इस्तेमाल वर्षा जल का एकत्रित करने के लिए किया जाता था। इसी प्रकार श्रीलंका स्थित सिजरिया में बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए रॉक कैचमेंट सिस्टम बना हुआ था। यह सिस्टम ईसा पूर्व 425 में बनाया गया था। इसे भी विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया। भारत में राजस्थान प्रदेश के थार क्षेत्र में 4500 वर्ष पूर्व बारिश के पानी को एकत्रित करने के प्रमाण हड़प्पा में भी की गई खुदाई के दौरान पाए गए। इसराइल, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काफी समय से काम हो रहा है। अब समय आ चुका है जबकि भारत में भी इस तकनीक को अनिवार्य करना चाहिए, और इस अनिवार्यता के लिए जन जागरण को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। यह अत्यंत आसान तरीका है। इसके अंतर्गत वर्षा जल का जो व्यर्थ बहने से रोकना, इसे नलियों पाइपलाइनों के माध्यम से इसे इस प्रकार संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए ताकि इसका उपयोग फिर से किया जा सके। भूजल भंडारों में वर्षा जल के द्वारा भंडारण

जा सकता है। वर्तमान जल संकट में यह न केवल जरूरी है बल्कि बेहद सस्ता और फायदेमंद भी है। कुछ दशक पूर्व तक लोग यह मानते थे कि पानी के भंडार असीमित हैं और हमें किसी ना किसी तरीके से मनचाहा पानी हमेशा मिलता रहेगा, परंतु पानी के लगातार दोहन से भूजल भंडार खाली हो गए हैं और भूजल स्तर निरंतर नीचे खिसकता आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल होगा कि वर्षा जल संग्रहण है क्या, क्योंकि हमने बातें काफी सारी कर ली। वर्षा के बाद इस पानी को उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग हेतु एकत्रित करने की प्रक्रिया को हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में आपकी छत पर गिर रहे वर्षा जल को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने के काम को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आज उत्तम गुणवत्ता वाली पानी की कमी चिंता का कारण बन रही है। शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला वर्षा जल शीघ्र ही बह जाता है, परंतु इसे एकत्रित किया जाए तो जल संकट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वर्तमान जल संकट को देखते हुए यही एकमात्र अब विकल्प बचा है जिसके द्वारा हम जल संकट का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण कहीं भी किया जा सकता है, परंतु इसके लिए वह स्थल सर्वथा सही और उपयुक्त होना चाहिए जहां पर जल का बहाव तेज होता है और वर्षा जल शीघ्रता से बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल संग्रहण निम्नलिखित स्थानों के लिए हमेशा उपयुक्त होता है, जैसे कि कम भूजल वाले स्थल, दूषित भूजल वाले स्थल, पर्वतीय विषम जल वाले स्थल, सूखा या बाढ़ प्रभावित स्थल, प्रदूषण जल वाले स्थल, कम जनसंख्या घनत्व वाले जगह और अधिक खनिज व खारे पानी वाले स्थल एवं महंगे पानी व विद्युत वाले स्थल। वर्षा जल शुद्ध जल होता है और इसका उपयोग सभी कार्यों के लिए भी आप कर सकते हैं। बर्तनों की साफ सफाई से की जा सकती है, नहाना व कपड़े धोना इससे किया जा सकता है, शौच के लिए, सिंचाई के लिए, मवेशियों के पीने नहाने आदि के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, औद्योगिक कार्य के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वर्षा जल की गुणवत्ता जांचने के लिए यदि वह उपयुक्त पाई जाती है तो इसका उपयोग पेयजल एवं खाना बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं। अब सवाल वही आता है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की वर्षा जल संचयन पे। अभी भी वक्त है, आप इस बात पर अमल करें, सोचें और प्रयास करें। यदि यह स्थिति रही तो जल्दी ही धरती भूगर्भीय जल भंडारों में खाली हो जाएगी। और अब समय आ गया है कि हम जितना पानी धरती से लेते हैं उतना ही पानी धरती को किसी न किसी रूप में लौटाएं। यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही संभव है। हमारा दायित्व है कि हम पानी की एक बूंद भी बेकार ना जाने दें, और इससे हमारे जल भंडार भर जाएंगे और जल स्तर भी ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे आपका आज कल और आने वाला कल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीददारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
3: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
3: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
3: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
3: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
3: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
3: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
3: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत।

0: नृत्य और विशेषकर मोरी गांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ई मेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वलरी बहुत उत्साहित है। क्यों? हाँ ये जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यही दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है, टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
1: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती

0: ती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुंचे तो चौहान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौहान जी घर पर हैं क्या?
1: अरे आइए आइए वर्मा जी, नमस्ते नमस्ते।
2: नमस्ते अंकल।
1: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
1: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
1: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
0: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
1: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
1: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
1: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
1: अच्छा तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
1: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौहान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
1: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
0: अरे भाई चौहान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
0: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
3: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो, चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गयी थी, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
0: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया, और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
5: हैप्पी सांकेन।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चौहान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चौहान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
1: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चौहान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे, और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें

0: कोई बीमारी, क्या बोलेंगे?
1: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
1: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
0: हाँ।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
3: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित।

0: कीजिए, ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आकाशवाणी का. ये आगरा केंद्र है. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर.

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है, वह है हिंदी। यह कहना है फादर कामिल बुल्के का।

हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये विचार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का। तो सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह ने। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नो एंट्री से। आवाजें हैं कुमार सानू के एल गायकनिक की, शब्द रचना समीर की है, संगीत रचना अनु मलिक की।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अब सुनते हैं आशा भोसले अभिजीत की आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से सवारा है चेतन ललित ने।

हम साथ साथ हैं इस फिल्म में अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और अनुराधा पौडवाल को। आर किरण के लिखे गीत को संगीत से संवारा था राम लक्ष्मण ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथी की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की।

हर दिल जो प्यार करेगा इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए

0: ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वर्षा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi said all those involved in the paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
3: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
4: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was

वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक आला सतही जायजा मीटिंग की ताकि रियासत के कुछ हिस्सों में बेतरतीब बारिश की वजह से पैदा होने वाले खुश्क साली और दीगर इलाकों में जरूरत से ज्यादा बारिश से पैदा होने वाले मुमकिन सैलाब से निपटा जा सके। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि रिलीफ कमिश्नर ऑफिस का कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहे और इसकी ताजा रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला के दफ्तर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस और मुतल्लिका इमदादी एजेंसियों को फराहम की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि हर जिले की सूरत हाल को रियासती सतह के डैशबोर्ड पर बाकायदगी से अपडेट किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि सैलाब से मुतासर और गैर महफूज अजला के तमाम रिलीफ कैंपों को आइंदा 3 दिन में मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए। रिलीफ कैंपों में ताजा गजाइयत से भरपूर खुराक, पीने का पानी, तबी सहूलियात, सफाई सुथराई और दीगर जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। डेयरी फार्म्स के जरिए बच्चों को दूध मुहैया किया जाए और खवातीन, बच्चों, बूढ़ों, माजूरों और हामिला खवातीन की जरूरियात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती तब्दीली कमीशन की मीटिंग में रियासत में जारी बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों, सनअती तरक्की, सरमायाकारी, अवामी बहबूद और खिदमात की फराहमी के मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने जीरो पॉवर्टी मुहिम के तहत अहल खानदानों को अंत्योदय कार्ड जारी करने और तमाम स्कीमों के तहत फवायद फराहम करने की हिदायत दी। लखनऊ नाइट सफारी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आला ने तमाम रस्मी कार्रवाइयों को तेज करने और बरवक्त पेशरफ्त को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में हज 2027 की तैयारियां इस साल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। वज़ीर मुमलिकत दानिश आजाद अंसारी की पहल पर मरकजी हुकूमत ने हज दरख्वास्त की आखिरी तारीख 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी ने पहली मुकर्रर तारीख के अंदर 19,280 हज दरख्वास्तें वसूल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अंदाजा लगाया गया है कि आखिरी तारीख तक रियासत से दरख्वास्तों की कुल तादाद 25,000 से 30,000 के दरमियान पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कई अर्जियों पर समाअत की जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर अतिया की मुनसिफाना बरवक्त तहकीकात का मुतालबा किया गया था। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि वो इस मामले में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तश्कील 9 पर गौर करे ताकि तफ्तीश बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका फरीकों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अतिया के मामले पर सियासत न करने की भी हिदायत दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोमालिया बागची और जस्टिस वी मोहिना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि राम मंदिर की पेशकश का तनाजा एक सादा फौजदारी मामला है और अदालत की वाहिद जिम्मेदारी है कि वो मुनासिब तहकीकात को यकीनी बनाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को मुतला किया कि रियासती हुकूमत ने इल्जाम की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी है और रियासती पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। केस की आइंदा समाअत 27 जुलाई को होगी। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अजला में वक्फे से होने वाली बारिश से नदियों की सतह आब तेजी से बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी में दरियाए शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी और कुशीनगर में दरियाए गंडक खतरे के निशान पर पहुंच गई है। बारिश से निजाम जिंदगी भी दरहम बरहम है। पीलीभीत जिले में मुसलसल बारिश की वजह से 8वीं जमात तक के स्कूलों को आज बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने कल तक रियासत भर में मूसलाधार बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं और अब समय है महिला श्रोताओं के कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार में मेरी सभी श्रोता बहनों का स्वागत है। बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी लक्ष्मी शर्मा। बहनों, आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप देखिए कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़ चैनल हो, लोग अपनी बात अच्छे से रख रहे हैं। कई बार उनके बात रखने का तरीका गलत हो जाता है, कई बार गलत बात को भी लोग समर्थन करने लग जाते हैं या बढ़ावा देने लग जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है।

है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे अंदर जिस एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है सिविक सेंस की। सरल भाषा में कहें तो इतनी समझ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारे राष्ट्र हमारे समाज के लिए हितकर है और क्या नहीं। फ़ोन ग्रुप पर कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आया, हमने ना उसकी जांच पड़ताल की, ना ये जानने की कोशिश की कि उसमें कितनी सच्चाई है, ना ही उसकी संवेदनशीलता को समझने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस संदेश को आगे बढ़ाने से सामाजिक समरसता में कमी आए, किसी तरह का कोई विवाद पैदा हो जाए। बस उठाया फ़ोन और कर दिया फॉरवर्ड। हम अपने घर को तो महल जैसा चमका के रखते हैं और सड़कों पर जहाँ मन किया मसाला थूक दिया, कचरा डाल दिया, मल मूत्र का विसर्जन कर दिया। चौराहों पर खड़े होकर इंजन स्टार्ट करके रेड लाइट पर भी हॉर्न बजाते रहना, डीजल पेट्रोल की बर्बादी करना, धरनों के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना,

सच्चाई है ना ही उसकी संवेदनशीलता को समझने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस संदेश को आगे बढ़ाने से सामाजिक समरसता में कमी आए, किसी तरह का कोई विवाद पैदा हो जाए। बस उठाया फोन और कर दिया फॉरवर्ड। हम अपने घर को तो महल जैसा चमका के रखते हैं और सड़कों पर जहाँ मन किया मसाला थूक दिया, कचरा डाल दिया, मल मूत्र का विसर्जन कर दिया। चौराहों पर खड़े होकर इंजन स्टार्ट करके रेड लाइट पर भी हॉर्न बजाते रहना, डीजल पेट्रोल की बर्बादी करना, धरनों के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब वो चीज़ हैं जो यह बताती हैं कि हम पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन गुने नहीं, समझे नहीं। हमारे अंदर यह समझ नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। हमारा, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज का हित किस में है? सब कुछ सरकार कर दे, सरकार ही योजना बना दे, सरकार ही लागू कर दे, सरकार ही देश को साफ सुथरा बना दे। ये वही बात हो गई कि भगत सिंह पैदा तो जरूर होना चाहिए लेकिन हमारे नहीं, बगल के घर में। पंडित श्री राम आचार्य कहते हैं कि जग कैसा मेरे जैसा, मतलब जो व्यवहार या बर्ताव हमें खुद के लिए पसंद ना हो उसे कभी भी दूसरों के साथ ना करें। ये देश हमारी मातृभूमि है, हम वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाली संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में जितनी परवाह हमें अपने घर की है, अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार नातेदारों की है, वही परवाह हमें अपने गांव, समाज, गली मोहल्ले, देश की भी होनी चाहिए। सिविक सेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से करना हो या है। अब अपना घर हो या बाहर, ऑफिस हो या सार्वजनिक जगह, कम नहीं तो बिजली उपयोग मत कीजिए, नलों को खुला छोड़कर पानी को बर्बाद ना करें। नगर निगम शहर के कोने कोने को चमकाने का, साफ सुथरा रखने का प्रयास कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि कूड़ा कचरा एक नियत स्थान पर डालकर शहर को साफ और स्वच्छ रखें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ, समाज में प्यार बनाए रखें, अपने बच्चों को भी सही नैतिक मानवीय मूल्य समझाएं। मैंने सारी बातों का सार यही है कि यह शब्द सुनने में बड़ा हल्का और छोटा लगता है लेकिन इसके अंदर पूरे समाज को, पूरी पीढ़ी को बदलने की ताकत है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने समाज को बेहतर बनाएं और सुने यह प्यारा सा गीत।

0: बहनों आप देखिए, आज लोगों की सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। गुस्से सामने वाले को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, वही रिश्ते खत्म हो जाते हैं। विश्वास बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो इन्हीं सब के बारे में कि कैसे अपने रिश्तों को अच्छा रखें, कैसे उन्हें जोड़ कर रखें और अपने सफल जीवन के लिए क्या आवश्यक है, विस्तार से हमें बता रही हैं नूरी चतुर्वेदी अपनी वार्ता सफल जीवन के लिए आवश्यक है सहनशीलता और विश्वास के माध्यम से।
1: यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जीवन में हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, कोई सफल शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या व्यवसायी। लेकिन सफलता केवल प्रतिभा या भाग्य से नहीं मिलती। सफलता के लिए दो महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता होती है, सहनशीलता और विश्वास। बहनों, सहनशीलता क्या है? कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, दूसरों की बातों को समझना और विपरीत समय का शांत मन से सामना करना। जीवन में अनेक बार हमें असफलता, आलोचना और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएं या निराश होकर हार मान लें, तो सफलता हमसे दूर हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध में आकर बदले की भावना रखते हुए गलत कार्य का करना, चोरी करना, किसी को जान से मार देना, ऐसा करने से हम अपना जीवन खराब कर देंगे, सफलता हमसे दूर हो जाएगी। अगर कोई काम नहीं बना, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमें बुरा ना मानकर बात को समझते हुए कुछ सीखना चाहिए, ना कि बुराई दिखाने वाले को बुरा समझना चाहिए। हम लोगों को अपने गुण अवगुण को सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करनी होगी। व्यक्ति हर कठिनाई को सीखने का अवसर मानता है और आगे बढ़ता रहता है। बहनों।

0: इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, संघर्ष किया, अपनी गलतियों से सीखा और सफलता प्राप्त की। इसीलिए कहा जाता है कि धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। बहनों, विश्वास सबसे पहले स्वयं पर होना चाहिए। यदि हमें अपनी क्षमता पर भरोसा होगा, तभी हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। आत्मविश्वास हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उनका मार्गदर्शन हमें सही दिशा देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। विश्वास केवल अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों का विश्वास भी जीतना चाहिए। ईमानदारी, सत्यता, अच्छा व्यवहार दिखाने से व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। बहनों, सबसे पहले है परिवार। जितने सदस्य हैं, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, भरोसा होना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी सब प्यार की डोर से बंधे हुए हैं। बहनों, पहले के समय में लोग शिक्षित कम थे, लेकिन प्यार भावना अधिक थी। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सब एक दूसरे के सम्मान का, भरोसे का गलत फायदा ना उठाते हुए प्रेम के साथ रहते थे। बहनों, हम आधुनिक हुए, परिवार छोटा हो गया, रिश्तों से प्यार सम्मान सब खत्म हुआ। शिक्षा तो उच्च प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अपने विचार भावों को उच्च करना भूल जाते हैं। बहनों, आज हम सभी मानसिक रूप से बीमार हैं। पहले अपने आप पर ध्यान देना होगा, तभी अपने परिवार, समाज, देश का विकास कर सकते हैं। आइए हम अपने जीवन में सहनशीलता को अपना आभूषण और विश्वास को अपनी शक्ति बनाएं। यही दोनों गुण हमें सफलता, सम्मान और सच्चे सुख की ओर ले जा सकते हैं। हौसलों की उड़ान कभी कम मत होने देना, मुश्किलों के आगे कदम मत रोकने देना, भरोसा और मेहनत को अपना साथी बना लो, सफलता को एक दिन अपना मुकाम बना लो। हमें अपने जीवन में सहनशीलता, आत्मविश्वास, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। यही गुण हमें एक सफल, संतुलित और सम्मानित जीवन की ओर ले जाते हैं। बहनों, सम्मान का जीवन जीना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हम अपने कर्मों द्वारा यह तय कर सकते हैं कि सम्मान प्राप्त करना मुश्किल काम नहीं है। कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी सफलता से नहीं, बल्कि संघर्ष के समय उसके धैर्य और विश्वास से होती है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे दो अदृश्य शक्तियां होती हैं, सहनशीलता और विश्वास। यदि सहनशीलता हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है, तो भरोसा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साधारण परिवार से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। अनेक असफलताओं के बाद भी उन्होंने अपने सपनों और मेहनत पर भरोसा नहीं छोड़ा। आज के समय में युवा तुरंत परिणाम चाहते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में दूसरों की सफलता देखकर कई बार हम अपने संघर्ष को कम आंकने लगते हैं, लेकिन हर सफलता के पीछे बरसों की मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास छिपा होता है। विश्वास रखो अपने आप पर, सफलता होगी आपके हर कदम पर।
1: अभी हम सुन रहे थे वार्ता सफल जीवन के लिए आवश्यक है सहनशीलता और विश्वास। वार्ताकार थी नूरी चतुर्वेदी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, पर अभी समय है एक अंतराल का।

बहनों कहते हैं रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और संवाद से बनते हैं और निभाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वास्तव में संवाद, जिसे हम इंग्लिश में और अपनी रोज़मर्रा की भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं, वह एक पुल है जो दिलों को जोड़ता है और दूरियों को मिटाता है। जब हम एक दूसरे की बात समझने का प्रयास करते हैं, अपनी भावनाओं को सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं और सामने वाले की बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने काम, पढ़ाई और मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने परिवार और प्रियजनों से खुलकर बात करने का समय ही नहीं निकाल पाते। हम सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताते हैं, लेकिन अपने माता पिता, भाई बहनों या दोस्तों के साथ कुछ मिनट बैठकर दिल की बात नहीं कर पाते। यही दूरी धीरे धीरे गलत फहमियों को जन्म देती है। संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना, समझना और सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करना भी है। जब हम किसी की बात बिना टोके सुनते हैं और उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं, तो उसके मन में विश्वास पैदा होता है, और विश्वास ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। परिवार में यदि माता पिता बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और बच्चे भी अपनी हर छोटी बड़ी बात खुलकर साझा करें, तो परिवार में प्रेम और अपनापन बना रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहाँ खुलकर बातचीत होती है, वहाँ समस्याएं बड़ी नहीं बनती, बल्कि समय रहते उनका समाधान निकल आता है। वैसे ही मित्रता में भी सच्चा संवाद रिश्ते को वर्षों तक मजबूत बनाए रखता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं बल्कि संवाद है। यह केवल समाज और देश पर ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। यदि हम गुस्से, अहंकार और चुप्पी की जगह प्रेमपूर्ण संवाद को अपनाएं, तो अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, मोबाइल फोन से थोड़ा समय निकालकर अपनों से, एक दूसरे से उनके दिल का हाल पूछें और अपने मन की बात साझा करें। छोटी छोटी बातें जैसे धन्यवाद कहना, माफ़ी मांगना, किसी की प्रशंसा करना, समय समय पर हालचाल पूछना भी रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भाव निभाता है। बहनों, जीवन में धन, पद और सफलता तो दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक बार टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने रिश्तों को समय रहते सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि अपने रिश्ते और अपने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए सुनते हैं अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, उनके प्यार के लिए ये गीत।

बहनों, कहा जाता है कि स्वस्थ हृदय ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, जीवन का आधार है। हमारा हृदय दिन रात बिना रुके काम करता है, इसीलिए उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ दिल के लिए सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय है संतुलित और पौष्टिक भोजन। हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, दाल, दूध, दही और सूखे मेवे शामिल करने चाहिए। ये खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं और हृदय को मजबूत बनाए रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिक तेल, घी, नमक, चीनी, जंक फूड और तले भुने भोजन का अधिक सेवन हमारे दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं बल्कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना, तनाव से दूर रहना और पूरी नींद लेना भी हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो बहनों, आप भी आज से अपने और अपने परिवार के खान पान को संतुलित और पौष्टिक रखें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पर एक छोटे अंतराल के बाद।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बेनो, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपना इतना ख्याल रखने के बाद भी हम या हमारे परिवार में से अक्सर कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है, जिसमें डॉक्टर और दवाइयों में हमारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हालातों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसियाँ करवा के रखते हैं, तो कुछ लोग कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान है SIP, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। SIP आप एक बहुत बड़ी रकम से नहीं बल्कि एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब भी SIP करें तो एक निश्चित समय के लिए करें, उससे पहले अपना पैसा ना निकालें, क्योंकि उसमें जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बेहतर आपका रिटर्न होगा। तो बहनों, आप भी अपनी छोटी मोटी जैसी भी हो अपनी सेविंग जरूर करें, जिससे वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ने पर आपको किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो बहनों, समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का, बारिश का मौसम है तो अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें और सावन के महीने को एंजॉय करें। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारी महिला श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर

श्रोताओं, समय हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शिवप्रिया भारद्वाज के गाए कुछ भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे शिवप्रिय भारद्वाज के गाए कुछ भजनों का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके उपरांत दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को

0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम

0: 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की

0: रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी शोभा गोटू का गायन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं दादरा, बोल हैं अंधेरिया।

अब सुनते हैं इन्हीं का गाया ठुमरी गायन राग मांझ खमाज में। बोल हैं अब कैसे धरूं धीर।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विदुषी शोभा कुटू का गायन। अभी आपने सुना दाजरा, बोल थे अंधेरियां हैं रात।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विद्युत श्री शोभा गुटू का गायन, जिसमें आपने सुना दादरा और ठुमरी। इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर

यदि आप बिना नहाए अधिक दिन रहेंगे तो मक्खियां भी आपका साथ छोड़ देंगी। इसलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें।

आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म पाकीजा से। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था कमाल अमरोही ने, संगीतबद्ध किया था गुलाम मोहम्मद ने। अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में छलिया फिल्म का गीत। कमर जलालाबादी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम था मंजिल। गीत को लिखा था योगेश ने, संगीतबद्ध किया था आर डी वर्मन ने। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं और अब समय है हेलो मेरी पसंद के पुनः प्रसारण का। संवादक हैं विशेषता शर्मा, प्रस्तुत करता है अनिंद्र सिंह।

0: हेलो मेरी पसंद। साथियों, रात्रि के 10 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुरों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर कली आपकी पसंद से खिली है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके सबसे चहेते फरमाइशी प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में। स्वीकार कीजिए मेरा यानी विशेषता शर्मा का प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। दोस्तों, फिजाओं में आज फिर एक नया सुरूर है क्योंकि आपकी पसंद का नगमा अब आपसे बस एक कदम दूर जो है। तो देर किस बात की है, जल्दी से उठाइए अपना फोन और हमें बताइए कि आज आपकी फरमाइश किस गीत के लिए है। और देखिए, पहले श्रोता तो हमसे जुड़ भी चुके हैं, आइए देखते हैं कि कौन है। हेलो, हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम?
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवा है।
0: सागर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, अच्छे।
0: सागर जी, आपका फोन हर बार लग जाता है ना?
1: मैंने अपना अपना नसीब है, इसीलिए लग जाता है मेरा फोन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी, सबका अपना अपना नसीब होता है और आपका नसीब बहुत अच्छा है कि हर बार आपका कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाता है।

0: तो इस वक्त आप क्या कर
1: जी
0: रहे हैं? आजकल क्या काम चल रहा है?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ। मैं यार काम चल रहा है मेरा।
0: अच्छा, आप कहाँ रहते हैं?
1: गांव तो मेरा राजस्थान में बसी नवाब धौलपुर, उत्तर प्रदेश में मैं काम करता हूँ।
0: जैसे आपने हमें बताया कि आप राजमिस्त्री हैं, किस तरह का काम अभी आप कर रहे हैं?
1: इस कॉलेज है उसमें काम चल रहा है।
0: अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विद्यालय में आपको काम करने का मौका मिला है। सागर जी,
1: बिल्कुल।
0: आपने पढ़ाई की है?
1: मैंने 10वें तक पढ़ा हूँ मैं।
0: अच्छा, आप 10वीं तक पढ़े हैं। तो आप मानते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है, सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए?
1: शिक्षा की तो बहुत है, मतलब पढ़ लेंगे तो नौकरी वोकरी लग जाएंगी, नहीं वैसे तो वैसा ग्राहक मजूरी काम करना पड़ेगा।
0: आपके घर में जो बच्चे हैं उनको आपने शिक्षा दिलवाई है?
1: हाँ टीचर है बच्चा।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब
1: जी
0: जीवन
1: बिल्कुल,
0: सफल हो गया आपका।
1: मेहनत करिए तो सफल तो होंगे जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: दादा फिल्म मिल जाएगी, दिल के टुकड़े टुकड़े मुस्कुरा के चल दिए।
0: ठीक है, सागर सिंह कुशवाहा जी, आप अपनी पसंद पर सुनिए दादा फिल्म का ये गीत।
1: ठीक।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर सिंह कुशवाहा की पसंद पर दादा फिल्म का ये गीत। आइए देखते हैं अगला फोन हमें कहाँ से आया है। हेलो
1: हेलो फरमाइए।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: गंगानगर सुकुहाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं बनवारी लाल जी?
1: बढ़िया।
0: और इस समय वहाँ मौसम कैसा है?
1: बहुत गर्मी अधिक है, पड़ रही है।
0: तो बारिश नहीं हो रही है अभी?
1: अभी बारिश नहीं हो रही है, आसार तो हैं।
0: तो बनवारी लाल जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप हमारे कार्यक्रम में? क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है आशा। तीसरा दिल हो आखिर टूट जाता है।
0: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपनी पसंद पर सुनिए आशा फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू।

0: ये गीत आप सुन रहे थे बनवारी लाल कुशवाहा जी की पसंद पर, और गीत को हमने लिया था फिल्म आशा से, और फोन हमें इशारा कर रहा है कि अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं ये फोन कहाँ से हमें आया है। हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम?
1: जी मैम, मैं सोनू वर्मा, जिला जौनपुर से बात कर रहा हूँ। नमस्ते।
0: नमस्कार सोनू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या करते हैं सोनू जी आप?
1: जी मैं मजदूरी काम करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: मौसम यही थोड़ा बहुत, कल थोड़ा बारिश हुई थी, अब धूप छा भी हो रहा है। कल थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बारिश हुई है।
0: जी सोनू जी, और क्या क्या शौक हैं आपके?
1: जी मेरा शौक मैम यही रेडियो।

0: है और मतलब रेडियो प्रसारण जो भी आता है सुनता रहता हूँ, खासकर आपका प्रोग्राम भी अधिकतर सुनता हूँ।
1: जी हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप?
0: जी
1: आकाशवाणी आगरा के और भी कार्यक्रम सुनते हैं आप?
0: जी मैम, और भी सुनता हूँ।
1: कैसे लगते
0: जी
1: हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
0: जी मैम, अच्छे लगते हैं, मतलब सादगी भरा प्रोग्राम रहता है, मुझे अच्छे लगते हैं।
1: जी, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी मैम, मुझे गीत सुना दीजिए, दो आंखें 12 हाथ का गीत है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
1: ठीक है सोनू जी, आप अपनी पसंद पर सुनिए दो आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गीत।
0: जी धन्यवाद।

0: आंखें बारह हाथ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू जी की फरमाइश पर। आइए देखते हैं अगले श्रोता हमसे कहां से जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद मैडम।
0: आपका नाम?
1: हाँ जी मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ मैडम।
0: सनी, आप कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैडम मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ।
0: सनी जी क्या करते हैं आप?
1: मैं मैडम अकाउंट्स करता हूँ, अकाउंट का काम देखता हूँ।
0: और इसके अलावा आपके कोई शौक भी हैं?
1: हाँ मैडम, मैं वो बैडमिंटन खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, और सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है मैडम वो मुझे म्यूजिक सुनना और बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और मैं गा भी लेता हूँ, मुझे इतना ज्यादा शौक है म्यूजिक का।
0: अरे वाह, मतलब आप वैसे जो है अकाउंट्स का काम करते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि है और म्यूजिक में भी आपकी रुचि है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके पसंदीदा गायक कौन है?
1: मुझे जो सबसे ज्यादा गायक पसंद है वो सबसे ज्यादा तो सोनू निगम पसंद है, पर उनके अलावा मैं के सुखविंदर सिंह, कुमार सानू, उदित नारायण, इनके गाने भी सुनना बहुत पसंद करता हूँ। मैं बहुत बहुत गाने सुनता हूँ इन गायकों के।
0: सिर्फ सुनते हैं या आप
1: हाँ,
0: गीतों को गुनगुनाते भी हैं?
1: हाँ मैं शौकिया गा लेता हूँ मैडम।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए जरा, हमारे श्रोता भी सुने।
1: जी मैं आपको जो गाना गा के सुना रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप गाना भी वो आप प्ले कर दीजिए मेरे लिए प्रोग्राम में, तो मैं आपको उसकी दो लाइन सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: उदित जी का गाना है वो, उदित नारायण साहब का।

0: जी मैडम,
1: क्या बात है सनी जी, मतलब आपको सिर्फ शौक नहीं है बल्कि आप तो हमें एक प्रोफेशनल गायक मालूम पड़ रहे हैं।
0: अरे नहीं मैडम, थैंक यू सो मच, पर मैं ऐसे शौकिया गा लेता हूँ और बस ये तो भगवान की देन है तो बस ऐसे गा लेता हूँ मैडम।
1: तो आप यही गीत सुनना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में?
0: हाँ जी जी मैडम, हाँ ये ही गाना सुनवा दीजिए आप मुझे।
1: ठीक है सनी जी, हम ये गीत आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं। आपके
0: जी
1: भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं, लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे सनी की पसंद पर ये गीत, और आइए देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका परिचय?
1: हेलो मैम, नमस्ते, मैं पुष्पांग बात कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ।
0: हमारा आकाशवाणी आगरा सुनते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, क्या करते हैं पुष्पांग जी आप?
1: मैम मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ एज अ ट्रेनी।
0: अच्छा, तो किस सेक्टर में है?
1: मैम मैं हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में।
0: इसके अलावा आपके कोई और भी हॉबीज, आपके शौक हैं?
1: हाँ मैं गाने सुनता हूँ, रेडियो आकाशवाणी आगरा सुनता हूँ, चेस खेलता हूँ।
0: अरे वाह, आप चेस भी खेलते हैं और गाने भी सुनते हैं। तो
1: जी
0: किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है?
1: मैम वो तो ऐसे जैसे मूड होता है, जैसे माहौल होता है, उस हिसाब का गाना सुन लेते हैं। कभी सैड वो होता है तो सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, पंजाबी
0: अच्छा,
1: सुनने का मन होता है तो पंजाबी सुन लेते हैं।
0: आपने मैं बताया कि सैड मन होता है तो आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो भाई क्यों? आप तो बहुत यंग, हमें मालूम पड़ रहे हैं, बहुत यंग बच्चे हैं, तो ये मूड आपका सैड कैसे हो जाता है? आपका तो बड़ा एनर्जेटिक मूड रहना चाहिए, उमंग से, उल्लास से भरे हुए होने चाहिए आप।
1: नहीं मतलब ऐसा होता है ना, जैसे काम वाम पे जाते हैं तो फिर थकान हो जाती है, थकार के फिर घर पे आते हैं तो वो थोड़ा ऐसे पुराने सैड सॉन्ग होते हैं ना, किशोर कुमार के और ऐसे गाने सुनने का मन करता
0: जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ गई हो तो
1: है।
0: इसलिए आप
1: नहीं
0: सैड
1: नहीं ऐसा
0: सॉन्ग?
1: कुछ नहीं है मैम।
0: तो अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है। तो आज आपका मूड कैसा है, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मैम ओम शांति ओम का बजा दीजिए, आंखों में तेरी अजब सी अदाए।
0: ठीक है पुष्पांग जी, इस गीत को आपके साथ साथ और कौन कौन सुनेगा?
1: मैम मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरे साथ ही रहता है तो वो और मैं सुनेंगे।
0: उनका नाम भी बता दीजिए।
1: उनका नाम वासुदेव जांगी।
0: ठीक है पुष्पांग जी, आप अपने दोस्त के साथ सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत, और अगली बार हमें फोन जरूर कीजिएगा।
1: जी बिल्कुल।

ओम शांति ओम। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना पुष्पांक की पसंद पर। साथियों, अब वक्त की सुइयां कह रही हैं कि हम आपको अलविदा कह दें, पर यादों का ये सुरीला कारवा यूं ही चलता रहेगा। हेलो मेरी पसंद के आज के सफर को यहीं रोकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर होगी आपके पसंद के गानों और आपकी मीठी बातों से यही हसीन मुलाकात। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। अपनी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हेलो मेरी पसंद का पुनः प्रसारण। संवादक थे विशिष्टा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद सिंह। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।

0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा वर्ग के श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा के विषय होंगे सिमटते जल भंडार एवं खारची पूजा। अतुलनीय भारत सेगमेंट में आप सुनेंगे गोला गोकर्णनाथ। हेल्थ प्लस सेगमेंट में सुनेंगे साफ पानी, ताजा भोजन और हैंड हाइजीन। साथ ही सुनेंगे सूरज योगी का काव्य पाठ। शाम 6:00 समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा बकरी पालन। भेंट वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा अमरूद की खेती से भरपूर उत्पादन हेतु वैज्ञानिक तकनीकी। भेंट वार्ता के अंतर्गत डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र से बातचीत करेंगे ब्रजेंद्र नारायण। साथ ही सुनेंगे नई खोज, मंडी भाव, मौसम और कुछ लोकगीत।

कार्यक्रम मजदूर मंडल का समय रहेगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा पुस्तकें और हमारा जीवन। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा परिवेश के बदलते तरीके। वार्ताकार होंगे रिंकू चक्रवर्ती। साथ ही सुनेंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स और फिल्म संगीत।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय होगा जलवायु परिवर्तन और हमारी तैयारी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक प्लस मंथन। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे पंडित विश्वनाथ। आप प्रस्तुत करेंगे राग पुरिया कल्याण में ख्याल गायन। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टोरी की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है पुकार। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर की, संगीत दिया है राजकुमार संतोषी ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत है सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर। शब्द रचना है किरण मिश्रा की, संगीत दिया है नंदू होनप ने।

सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम है नास्तिक।

इसी गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मुस्कुराते हुए अपने सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जिंदगी भी कितनी मजेदार है ना। कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी नौकरी की चिंता, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक, तो कभी परिवार के साथ छोटी छोटी बातें। लेकिन इन सबके बीच अगर कहीं घूमने का मौका मिल जाए, किसी नई जगह को देखने का मौका मिल जाए, तो मन एकदम ताज़ा हो जाता है। और सच कहूँ, घूमना सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होता। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी परंपराएं देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा भारत कितना बड़ा और कितना रंग बिरंगा है। हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, लेकिन दिलों की गर्मजोशी वही रहती है। आज मैं भी आपको ऐसी ही एक जगह की सैर पर ले चलने वाली हूँ। ऐसी जगह जहाँ आस्था भी है, इतिहास भी है, और हर साल लाखों लोगों की श्रद्धा भी उमड़ती है। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले मुझसे मिलिए। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी साथी रोशनी शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी आगरा के यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ बातें होती हैं युवाओं की, उनके सपनों की, उनके विचारों की, और हमारे देश की उन खास बातों की जो हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती है। तो चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत समय पहले भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयं शंभू हैं, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये अपने आप प्रकट हुए। यही कारण है कि ये जगह लोगों की गहरी आस्था का केंद्र बन गई। धीरे धीरे यहाँ मंदिर बना और फिर दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। दोस्तों, गोला गोकर्णनाथ को कई लोग प्यार से छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के प्रति लोगों की श्रद्धा बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसी काशी में देखने को मिलती है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। दोस्तों, साल भर यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन सावन का महीना, जिसका इंतज़ार हम सभी को है, जो हाल ही में आने भी वाला है, आते ही यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। रंग बिरंगी कावड़ लेकर श्रद्धालु लंबी लंबी यात्राएं करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं। सावन के दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। दोस्तों, इस मेले में सिर्फ पूजा ही नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे झूले, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयाँ, स्थानीय खाने की चीज़ें और तरह तरह के हस्तशिल्प भी वस्तुएं भी मिलती हैं। बच्चे खुशी से झूला झूलते हैं, बड़े लोग खरीदारी करते हैं और पूरा माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा हो जाता है। ऐसे मेले सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं होते दोस्तों, इनसे आसपास के दुकानदारों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को भी कमाने का अच्छा अवसर मिलता है। यानी आस्था के साथ साथ ये मेला लोगों की रोजी रोटी का भी सहारा बनता है। और सबसे सुंदर बात पता है क्या है? यहाँ आने वाले लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग परंपराओं को मानने वाले होते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे

0: दरवाजे पर पहुंचते ही सब एक जैसे हो जाते हैं। यही तो हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, अनेकता में एकता। दोस्तों, जब हम देश के अलग अलग हिस्सों के ऐसे त्योहारों और मेलों के बारे में जानते हैं तो हमें महसूस होता है कि हर राज्य की अपनी एक खास पहचान है। कहीं रथ यात्रा निकलती है, कहीं फूलों का त्यौहार मनाया जाता है, तो कहीं ऐसी पूजा होती है जिसके बारे में शायद हमने पहले कभी नहीं सुना हो। इसी बात पर आज का हमारा सवाल भी तैयार है। आज का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ की तरह भारत के एक और राज्य त्रिपुरा में आज से एक विशेष धार्मिक उत्सव की शुरुआत हो रही है। उस उत्सव अपनी अनोखी परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो बताइए, आज 21 जुलाई से शुरू होने वाले इस विशेष उत्सव का नाम क्या है? जवाब बहुत आसान है, बस एक शब्द। तो सोचिए ज़रूर और जवाब तैयार रखिए। इसका जवाब हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में। तो दोस्तों, भारत की पहचान सिर्फ उसके मंदिरों, मेलों और त्योहारों से तो नहीं बनती, बल्कि उसकी समृद्ध भाषा, साहित्य और कविता से भी बनती है। हमारी कविताएं कभी जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं तो कभी मन में नई उम्मीद जगा देती हैं। तो आइए अब शब्दों की इस खूबसूरत दुनिया की ओर चलते हैं। पेश है एक भावपूर्ण काव्य पाठ जिसे अपनी सशक्त आवाज और खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं सूरज योगी सूर्यनाथ। सुनिए, महसूस कीजिए।
1: पानी के ऊपर ये गीत है, सुनिएगा। जिस जमुना में कृष्ण कन्हैया नाच चुके हैं ता ता थैया, जिस जमुना

पानी रे। और सुनिएगा, हमने क्या नहीं किया, हम अच्छा भविष्य चाहने के लालसा में कहाँ तक पहुंच गए। हमने सुखद सरोवर समतल

रे। और अंतिम मंत्र, कहा जाता है भारतीय अध्यात्म में, भारतीय दर्शन में, कि जब तक अपने पुरखों की अस्थि कलेश हम जल में प्रवाहित नहीं करते, तब तक हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलता। वही बात मैं वहां से

पानी अगर बचा नैनों में, चलो प्रकृति की ओर छोड़कर, चलो प्रकृति की ओर छोड़कर, पत्थर की मेहमानी, पानी पानी रे, पानी पानी रे, कर दी तूने आंखें पानी पानी रे। ये तो रही पानी की बात, लेकिन आजकल कुछ युवा हैं जिनकी ना तो बातों में पानी है ना आंखों में पानी है। और एक छंद में, जो कि मेरी आयु भी युवाओं के अंतर्गत ही आती है, और इस आयु पे हमें सब अपने घर वाले भी कुछ नहीं दिखते, हमें अपने सगे संबंधी कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल अपने मित्र ही अच्छे लगते हैं। उन मित्रों की थोड़ी सी मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ आपको, वो सुनिएगा आप। कि पुण्य के प्रताप पर पालवी प्रपात हो तो, कि पुण्य के प्रताप पर पालवी प्रपात हो तो, प्रीति के प्रसून भी पवित्र नहीं होते हैं। कि पुण्य के प्रताप पर पालवी प्रपात हो तो, प्रीति

नहीं होते हैं, और कौन अपने है कौन है पराए हाय ये भी, कौन अपने है कौन है पराए हाय ये भी। जिंदगी के पृष्ठ पे सचित्र नहीं होते हैं, जिंदगी के पृष्ठ पे सचित्र नहीं होते हैं। वित्तशालियों के मित्र होते हैं हजार, किंतु वित्तशालियों के

असूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल। लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं, किशूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल। लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं, और सत्यता समझ मन जिंदगी में नाटकी है। सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं, सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं, और दुग्ध के विदग्ध काल आग

काम छोड़ देते आप जिनके लिए सदैव, वही मित्र समय पे काम नहीं आते हैं, वही मित्र समय पे काम नहीं आते हैं। और हमें करना क्या है इस समय, अगर हमने जो करना चाहिए वो नहीं किया तो क्या हो सकता है? अंतिम छंद के माध्यम से आपको बताता हूँ कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। और ऐनक व घड़ीहार आदि भूषणों से नहीं, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी, केवल पढ़ाई हाई से।

0: कान खोल के सुनो युवाओं आप जिंदगी की, कान खोल के सुनो युवाओं आप जिंदगी की। आज ले लो मौज, बाद मौज लेगी जिंदगी, आज ले लो मौज, बाद मौज लेगी जिंदगी, आज ले लो मौज, बाद मौज लेगी जिंदगी।
1: वाह दोस्तों, सचमुच शब्दों में एक अलग ही ताकत होती है। कभी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं तो कभी मन को सुकून देते हैं।

ये थे सूरज योगी सूर्यनाथ, जिन्होंने अपनी सुंदर प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी अहमियत हमें तब समझ नहीं आती जब वो हमारे पास होती है, तब समझ आती है जब वो हमसे खो जाती है, हमसे दूर हो जाती है या वो कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है पानी के साथ, जिस तरह काव्य पाठ में सूरज योगी सूर्यनाथ ने भी बताया। जब नल में पानी समय पर आ जाए तो हम शायद उस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन एक दिन पानी ना आए तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। इसी सोच के साथ आप बात करते हैं आज के अगले विषय, सिमटते जल भंडार की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले कई गांव और शहरों में कुएं, तालाब और हैंडपंप साल भर पानी से भरे रहते थे, लेकिन आज बहुत सी जगहों पर ये सूखते जा रहे हैं। जमीन के अंदर का पानी पहले से काफ़ी नीचे चला गया है, और यही कारण है कि कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। कई बार हम नल खुला छोड़ देते हैं, गाड़ी धोने में बहुत सारा पानी बहा देते हैं, या बारिश के पानी को संभाल कर रखने की कोशिश भी नहीं करते, और दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई और बढ़ता कंक्रीट भी बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर जाने से रोक देता है। नतीजा ये होता है कि भूजल धीरे धीरे कम होता जाता है। दोस्तों, अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा, और समाधान कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। कुछ छोटी छोटी आदतें, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ नल तुरंत बंद करें, बारिश के पानी को इकट्ठा करने यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, घर हो, स्कूल हो या दफ्तर, हर जगह पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ पानी को ज़मीन में पहुंचाने में भी मदद करते हैं। युवा होने के नाते हमारी एक छोटी सी भी आदत बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि हर व्यक्ति रोज़ थोड़ा सा पानी बचाने का संकल्प ले तो करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है। याद रखिए, पानी सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर हर बूंद की कीमत समझेंगे, अब वक्त हो गया है एक छोटे से संगीत विराम का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि संगीत के बाद युववाणी में बातचीत का सिलसिला फिर से आगे बढ़ेगा।

वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी हम पानी की बात कर रहे थे, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर पानी तो मिल जाए पर वे साफ ना हो तो क्या होगा? या फिर खाना तो अच्छा दिखे लेकिन ताज़ा ना हो, ऐसे में हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ पानी होना ही काफ़ी नहीं है, उसका साफ होना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसके साथ एक छोटी सी आदत भी हमारी सेहत की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ साफ पानी, ताज़ा भोजन और हाथों की सफाई यानी हैंड हाइजीन की। दोस्तों कई बार हम बाहर से घर आते हैं और बिना हाथ धोए ही कुछ खाने लगते हैं। कभी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, हमें लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारे हाथों पर ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हो सकते हैं जो आँखों से तो दिखाई नहीं देते लेकिन पेट दर्द और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसी तरह पीने का पानी भी हमेशा साफ होना चाहिए। अगर पानी शुद्ध ना हो तो शरीर में कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, इसलिए जहाँ तक हो साफ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए। अगर पानी की शुद्धता पर शक हो तो उसे उबालकर या फिल्टर करके पीना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं खाने की। तो दोस्तों आजकल बाहर का खाना देखकर मन तो बहुत जल्दी ललचा जाता है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि खाना ताज़ा है या नहीं। कई बार बासी या खुले में रखा हुआ भोजन हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कोशिश करें कि घर का ताज़ा और संतुलित भोजन ज़्यादा खाएं। इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ऊर्जा भी भरपूर मिलेगी। और हाथ धोने की सही आदत, ये तो बिल्कुल आसान है। खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, शौचालय के बाद और बाहर से घर आने पर साबुन और साफ पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ये छोटी सी आदत हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों एक स्वस्थ युवा ही अपने सपनों को पूरे जोश के साथ पूरा कर सकता है, इसलिए पढ़ाई हो, नौकरी हो, खेल हो या कोई नया लक्ष्य, इन सब की शुरुआत अच्छी सेहत से ही होती है। और अच्छी सेहत की शुरुआत होती है साफ पानी, ताज़े भोजन और साफ हाथों से। इसी छोटी सी लेकिन बहुत काम आने वाली बात के साथ अब लेते हैं एक और छोटा सा संगीत विराम। संगीत का आनंद लीजिए, उसके बाद युववाणी में फिर मुलाकात होगी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो हमने आपसे पूछा था कि 21 जुलाई से शुरू होने वाले उस विशेष धार्मिक उत्सव का नाम क्या है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है खर्ची पूजा। दोस्तों, खर्ची पूजा त्रिपुरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक उत्सव है। यह हर साल जुलाई महीने में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत आज 21 जुलाई को हो रही है। ये उत्सव लगभग 7 दिनों तक चलता है। इसमें 14 देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने भी पहुंचते हैं। दोस्तों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, जागते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आप प्रस्तुत है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

राम राम किसान भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक कार्यक्रम ग्रामीलोक में। और आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। किसान साथियों, खेती किसानी के साथ साथ उससे अलग हम कोई बिजनेस की बात करते हैं, कोई व्यापार की सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई बड़ी रकम, बड़ी जमीन और बहुत सारा रिस्क। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसा बिजनेस भी है, एक ऐसा व्यापार भी है जो बहुत कम पैसों में और घर के पीछे जो हमारी जगह खाली पड़ी है उसमें शुरू हो सकता है और आपकी आमदनी को दो गुना नहीं, तीन गुना, चार गुना करके आपको बना सकता है लखपति और करोड़पति। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की, यानी एटीएम मशीन की, गरीब की गाय की। साथियों, हमें पता है कि अब आपके मन में एक बात ये चल रही होगी कि भाई बकरी गरीब की गाय हो सकती है, लेकिन एटीएम कैसे हो सकती है? भाई ये तो पैसों वाली मशीन होती है। तो साथियों, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि बकरी वाकई में एक चलता फिरता एटीएम होती है, क्योंकि इसे आप जब चाहे बाजार में बेचकर तुरंत नकद पैसे कमा सकते हैं। और हमारे वे युवा साथी जो खेती किसानी के साथ कोई दूसरा व्यापार करना चाहते हैं तो बकरी पालन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब गाय भैंस मौजूद हैं तो बकरी पालन में ऐसा क्या खास है जिसे चुना जाए? तो साथियों, हम आपको बता दें कि इसके पीछे कई व्यवहारिक कारण हैं। पहला कारण तो ये है, कम पूंजी और कम जगह। साथियों, एक अच्छी भैंस या गाय खरीदने की कीमत में आप कम से कम 5 और 6 बकरियां खरीद सकते हैं और इन्हें रखने के लिए बहुत बड़े शेड की ज़रूरत आपको नहीं होती है। और भगवान न करे कोई एक बकरी बीमार हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। बकरियां साल में 2 बार बच्चे दे सकती हैं और अक्सर 1 बार में 2 से 3 बच्चे देती हैं, यानी बहुत कम समय में हमारे पास बकरियां 2 से 3 गुनी हो जाती हैं। साथियों, इस पशु को सूखे का साथी कहा जाता है। जहां सूखा पड़ने पर बड़े जानवर चारे की कमी से परेशान रहते हैं, वहीं बकरियां झाड़ और सूखी पत्तियां खाकर भी जीवित रह लेती हैं। दोस्तों, बकरी के मांस और दूध की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। इसके लिए आपको ग्राहक ढूंढने दूर नहीं जाना पड़ता, व्यापारी खुद आपके फार्म पर आते हैं। और साथियों, बकरी का मांस ही नहीं, डेंगू के समय इसके दूध की मांग आसमान छूती है, ये हम सबको पता है। बकरियों की लेड़ी जो खाद होती है वो भी नर्सरी और जैविक खेती के लिए बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि बकरी पालन करते समय हमारे किसान भाई और जो हमारे बकरी पालक होते हैं एक बात में मात खा जाते हैं, गलत नस्ल चुनकर। इसके लिए हमें अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से नस्लों का चुनाव करना चाहिए। जैसे उत्तर भारत में बर्बरी या सिरोही, भारी वजन के लिए अगर हमें बकरी पालन करना है तो बीतल या जमुनापारी नस्ल सबसे अच्छी होती है। किसान भाइयों, बकरियों को लेकर ऐसा माना जाता है कि इनमें बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। इसके लिए किसान भाइयों और बकरी पालकों को एक सीधा सा गुरुमंत्र ये है कि सावधानी और सफाई, क्योंकि बकरियों को बीमारी सिर्फ 2 चीज़ों से होती है, गंदगी और नमी। इसके लिए आपका बाड़ा हमेशा सूखा और हवादार होना चाहिए। उन्हें ज़मीन पर बांधने की बजाय लकड़ी के मचान पर रखें। और सबसे ज़रूरी बात, PPR, ET और खुरपका मुहपका का समय समय पर आप लोग उन्हें टीकाकरण कराएं। सरकारी पशु अस्पतालों में ये टीके बहुत कम दाम पर या ये कहें निःशुल्क मिलते हैं। अब बात आती है कि सरकारी जो हमारी जो सरकार है वो बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई मदद या सब्सिडी देती है? तो इसका जवाब है हाँ। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत बकरी पालन के लिए 30% और अधिक

अधिकतम 50% तक की सब्सिडी आपको देती है। इसके अलावा नाबार्ड के जरिए बैंकों से बहुत ही कम ब्याज पर लोन भी हमें मिल जाता है। आप अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं तथा ICAR फरा मथुरा में बकरी पालन की ट्रेनिंग भी हम लोग आसानी से ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, है ना सोने पे सुहागा, सरकार से आपको पैसा भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुनाफा तो आपका होगा ही होगा। तो फिर देर किस बात की है, नौकरी के पीछे भागने या किसी दूसरे की नौकरी करने के बजाय खुद मालिक बनिए। अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान और शुरू कीजिए बकरी पालन का ये शानदार सफर। और इसी खुशी में सुनते हैं ये लोकगीत और आइए सुनते हैं ये अपने बलम से क्या छोड़ने की कह रहे हैं।

0: हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीण लोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अपनी कर्म भूमि यानी खेती किसानी की। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरूद की खेती की। साथियों, हमारे वे किसान साथी जो बागवानी करते हैं और बागवानी में अमरूद की खेती करते हैं, वो अपनी खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन सी जो वैज्ञानिक तकनीक हैं उन्हें जानते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र से आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण सिंह।
2: किसान भाइयों नमस्कार। बारिश होने लगी है और मौसम में कुछ कुछ उमस ज़्यादा महसूस हो रही है। ऐसे में बागवानी करने वाले किसान भाइयों के लिए अमरूद की खेती पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यूँ तो इस क्षेत्र में अमरूद बहुत अच्छा प्राप्त होता है बागों से, और देखने को मिलता है कि अमरूद की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी है, लेकिन कैसे इन बगीचों से ज़्यादा अच्छी फसल ली जाए और इसमें क्या वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाए ताकि अगर कोई बीमारी हो रही है तो बीमारी का निदान हो जाए और फसल में अगर कम उत्पाद मिल रहा है तो वो ज़्यादा हो जाए। आज इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में RBS कॉलेज के प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी हमारे साथ हैं और आप बागवानी के विशेषज्ञ हैं। तो मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद भाई साहब
2: जी। सबसे पहले तो यही बताएं कि आगरा मंडल जो है ये अमरूद की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि अमरूद अगर कोई नाम लेता है तो इलाहाबाद का या प्रयागराज का नाम आता है, लेकिन आगरा मंडल में भी इसकी बहुत अच्छी खेती होती है। तो कितना महत्व है यहाँ पे और क्यों अमरूद की खेती के लिए ये महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र?
3: जी, आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है। एक्चुअल में अमरूद के केस में जब बात करते हैं हम, तो बहुत पुरानी कहावत है कि अमरूद जो है गरीबों का सेब है। और जैसे इसका मतलब, सेब का मतलब यह है कि सेब में जितने विटामिन्स, आयरन, जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमरूद में पाए जाते हैं और सस्ते में मिलते हैं, इसलिए इसको गरीबों का सेब कहते हैं। रही बात आगरा मंडल में, तो आप अगर विश्व लेवल पे बात करें तो नो डाउट जो है इलाहाबाद का अमरूद विश्व में फेमस है, जैसे आगरा का पेठा ऐसे ही।
2: जी जी।
3: लेकिन आगरा मंडल में अमरूद की खेती का बहुत बड़ा एरिया है और ये आगरा मंडल से लगा हुआ राजस्थान का पार्ट है, भरतपुर, इधर जो है पंजाब, ये सब एरिया में अमरूद बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। किसान भाई काफ़ी खेती करते हैं। आप देखते हैं ठंडी की ऋतु में जो है यहाँ अमरूद जो है बाजारों में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, मीठे आते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आगरा में किसान थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करें, क्योंकि समय बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ऐसे में फसलों के फलों के उत्पादन में कुछ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
2: जी जी जी जी।
3: तो उस संबंध में मैं 2-3 पॉइंट आपको विशेष रूप से इंगित करूंगा
2: जी,
3: जिसमें विशेषकर बाग लगाते समय एक सावधानी रखना है किसान भाइयों को। इसमें जो प्रजाति चयन करते हैं, प्रजातियां किसी सरकारी नर्सरी से लें। कई बार होती हैं किसान भाई पौध ले आते हैं तो वो देसी पौध निकल आती है, तो 5-6 साल बाद जब फल देने लगता है तो पता लगा ये देसी अमरूद है, तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। ऐसे में जब किसान भाई इसका बाग लगाने का प्लान बनाएं तो किसी सरकारी या किसी वैज्ञानिक से सलाह ले लें, अच्छी प्रजातियों का चयन करें, तो हम समझते हैं उत्पादन को जो ले रहे हैं उससे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अब लगाने में जो है ध्यान देने की बात यह है कि जब पौधरोपण होता है बगीचे का, तो थोड़ा मिट्टी का भी जांच कर लें, जिससे कि पता लग जाए कि उस मिट्टी में कोई बीमारी तो नहीं है। अभी हम रोग की चर्चा करेंगे आगे चल के, तो बीमारियों के पहले निदान हो जाए जिससे कि उस बगीचे का भविष्य जो है लंबे समय तक चले।
2: जी।
3: तो इसमें जो है लगाने के लिए मुख्य रूप से जो समय है, जो समय की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि बगीचा लगाने का विशेष समय होता है, तो वो जुलाई अगस्त के महीना, जो ये महीना चल रहा है, बहुत सर्वोत्तम महीना है लगाने का।
2: जी।
3: इसके पहले, एक महीने पहले अगर तैयारी किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है खेत को एक प्लान बना के 5 या 6 मीटर पर गड्ढे खुदाई कर लें और उसमें गोबर की खाद, कुछ कीड़े मकोड़े मारने वाली जो है दवाएं, इंसेक्टिसाइड जिसको

0: किसान जानते हैं,
1: हाँ
0: उसका प्रयोग कर लें तो उसमें जो है पौध जो लगाएंगे 100% पौध चल जाएंगे,
1: जी,
0: और 2-3 महीने बाद पता भी चल जाएगा कि कौन पौध चल गए हमारे और कौन नहीं चल पाए। इसमें
1: हाँ
0: एक केवल ध्यान देना है कि जल भराव ना होने पाए।
1: हाँ
0: जल भराव ज़्यादा दिनों के लिए हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें समस्या आ जाएगी, तो
1: जी
0: जल भराव को बचाना है। बाकी अमरूद का पौधा काफ़ी सहनशील होता है, जैसे गांव के किसान होते हैं काफ़ी सहनशील होते हैं
1: जी
0: और हम लोग शहर में जल्दी जुकाम हो जाता है, ऐसे ही पौधों के बारे में अमरूद वाला पौधा जो है ये बहुत सहनशील है। तो ये आपके इलाहाबाद से लेके और पूरे भारत में ही इसकी खेती बहुत अच्छे से होती
1: जी
0: है।
1: जी अच्छा, ये जो आपने कहा कि बाग लगाते समय, जब नया बाग लगा रहे हैं तो उस समय जो गड्ढे खोदे जाते हैं, आपने कहा कि 5 मीटर कम से कम, यानी 15 फीट
0: जी
1: की दूरी पर
0: जी जी
1: गड्ढे खोदे, गड्ढे कितने बाई कितने के होने चाहिए और कितना गहरा होना
0: जी
1: चाहिए?
0: गड्ढे ये आवश्यक है, जो हमारे पौधे चूंकि ये 20 से 25 साल तक पौधा चलता है, काफ़ी फैल भी जाता है, तो इसके गड्ढे की गहराई लगभग जो है 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर के
1: जी
0: आसपास जो है लंबाई चौड़ाई और 50-60 मीटर गहराई कर लें,
1: हाँ
0: तो जिससे कि हमें पता लग जाता है। कई जगह जो है खेतों में हमने देखा है कि कंकर या पत्थर एक लेयर पाई जाती है नीचे,
1: जी
0: तो अगर वो मिलती है तो उसको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्या
1: हाँ
0: होता है 15-20 साल बाद पौधा जब पौधे की जड़ जो है उस पत्थर के पास जाती है तो नीचे नहीं जा पाती।
1: जी
0: तो कई बार किसान भाई समस्या लेके आते हैं, साहब हमारा बगीचा जो है 10 साल पुराना है, ये पौधा सूख रहा है, तो इसकी
1: जी
0: गहराई पर
1: ध्यान
0: विशेष
1: देना
0: ध्यान
1: जरूर।
0: देना
1: जी
0: है।
1: जी जी जी अच्छा, अभी आपने बात की कि जो पौध का जो चयन करें वो किसी अच्छे ब्रीड का होना चाहिए और किसी अच्छे संस्थान से लें, खास करके सरकारी पौधे जहाँ मिलते हैं वहाँ से लें, तो कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं अमरूद की जो
0: जी
1: यहाँ पर सर्वाइव करेंगी?
0: जी जी ये आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि प्रजातियों के चयन से उपज को बहुत बढ़ाया जा सकता है।
1: जी
0: हमारे आगरा मंडल में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एक हमारे बिजपुरी क्षेत्र में है और एक अवागढ़ में है। इसके अलावा भी कई संस्थाएं हैं, हमारा महाविद्यालय भी है, तो उसमें जो लगाने से पहले एक सलाह जरूर ले लें किसान भाई, क्योंकि इसमें लगाते समय लागत ज़्यादा आती है। प्रजातियों की बात करें तो 2 प्रजातियां बहुत व्यापक स्तर पे हैं और उसका कोई विकल्प भी आज तक नहीं निकल पाया, एक है लखनऊ 49 और दूसरा है इलाहाबाद सफ़ेदा।
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: प्रजाति का मार्केट में चूंकि डिमांड इसकी ज़्यादा है।
1: जी
0: इसके अलावा एक चित्तीदार अमरूद और आता है जिसमें धब्बे होते हैं लेकिन खाने में बहुत मीठा होता है ठंडियों में,
1: जी
0: और एक लाल कलर का अमरूद आया है मार्केट में जिसको ललित के नाम से प्रजाति है। तो
1: जी
0: ललित की खासियत क्या है कि जब ठंडी की सीजन में अमरूद आता है तो लाल गूदे का जब होता है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर ये
1: हाँ
0: 40 रुपये किलो है तो लाल वाला अमरूद जो है
1: 60 रुपये में।
0: लगभग 50 से 60 रुपये किलो मिलता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और उसमें महक भी अलग ढंग की आती है। तो ये 4 या 5 प्रजातियां इस क्षेत्र के लिए हम संस्तुत करते हैं, जिसमें लखनऊ 49 पुरानी प्रजाति है हमारी
1: हाँ
0: और इलाहाबाद सफ़ेदा।
1: जी
0: जिसके अलावा नई प्रजातियों में बात करें तो 2-3 और हैं, जो कि लखनऊ में एक भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान है रहमान खेड़ा में,
1: जी
0: वहाँ इसकी बहुत अच्छी प्रजातियाँ मिल जाएंगी। यहाँ से लखनऊ 49 के भी पौधे अच्छे मिल जाएंगे,
1: जी
0: इसमें अमृत प्रभात है, अरका मूल्या है, कई प्रजातियाँ हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए जो है यहाँ डिमांड जो है मार्केट में
1: जी
0: लखनऊ 49 और इलाहाबाद की ज़्यादा है,
1: जी जी
0: इसमें कोई समस्या भी नहीं है, तो ये प्रजातियाँ अच्छी
1: जी
0: हैं।
1: जी जी अच्छा, पौध लग जाने के बाद उसकी देखभाल आवश्यक है, और थोड़ा जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो उसमें कीटों के लगने की बहुत संभावना होती है और साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, उस समय इनका ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना चाहिए?
0: जी जी बहुत अच्छा उठाया आपने। ये जो पौधे हमारे 4-5 साल के हो जाते हैं,
1: हाँ
0: इसमें अमूमन जो है 4 साल के बाद फूल आने लगता है।
1: जी
0: जब फूल आने लगता है उसके पहले और बाद में भी आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों, बगीचे में अमरूद के आसपास छोटे छोटे नए नए कल्ले निकल आते हैं, जिसको झूठा तना बोलते हैं हम लोग, उसके नीचे इसकी जड़ से भी कई पौधे निकल आते हैं,
1: जी
0: और उनको हमेशा हटा देना चाहिए, अन्यथा वो पोषक तत्व तो जो है पौधे का ले लेते हैं,
1: जी
0: तो उससे उपज हमारी प्रभावित होती है, फूल
1: हाँ
0: कम आते हैं।
1: जी जी
0: इसके अलावा रही बात बीमारियों की और रोग की या कीटों की, तो जब फल आने लगते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको फल मक्खी कहते हैं, ये प्रायः बरसात में इसका आक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। तो जब बरसात में ये लगता है तो सभी फलों में अमूमन हम लोग जब काटते हैं तो उसके अंदर कीड़े आप लोगों ने देखा होगा
1: जी जी
0: खराब जाते हैं, तो फल मक्खी

0: का अटैक जब होता है तो उसके लिए हम जो है दो तीन दवाएं हैं। एक नीम बेस्ड प्रोडक्ट है, आजकल मार्केट में नीम के उत्पाद पे तमाम कीटनाशक बन रहे हैं और रोग रोधी किस्में भी आ रही हैं,
1: जी
0: तो इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं मेलाथियान का 1 ml दवा जो है 10 लीटर में अगर डाल के छिड़काव किया जाए तो कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी और लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं उकठा। ये प्रायः जो है 10-15 साल जब बगीचा हो जाएगा या 10 साल के आसपास या
1: जी
0: 5 साल के बाद भी लगता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ
0: इसमें कवक का आक्रमण होता है।
1: जी
0: ये आजकल जैसे आदमियों में कैंसर से आदमी से बहुत भयभीत है, तो पुराने हमारे 10-10 साल के बगीचे किसानों के बड़ा दुख होता है इनका अटैक जब होता है। तो उकठा रोग में क्या होता है, पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं,
1: जी जी
0: इवन उनके फल जो है छोटे छोटे हैं वो भी काले काले होके सूख जाते हैं,
1: जी
0: धीरे धीरे पूरा बगीचा ही सूख जाता है। तो
1: जी जी
0: इसको ये बीमारी लगने से बचाने के लिए हमें

0: अटैक जब होता है तो उकठा रोग में क्या होता है, पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं,
1: जी
0: इवन उनके फल जो है छोटे छोटे हैं वो भी काले काले होके सूख जाते हैं,
1: जी
0: धीरे धीरे पूरा बगीचा ही सूख जाता है। तो
1: जी जी
0: इसको ये बीमारी लगने से बचाने के लिए हमें जो है कवकनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए,
1: जी
0: और ये ना
1: फंज
0: लगने पाए तो ज़्यादा अच्छा
1: जी
0: है।
1: जी फंजीसाइट मतलब
0: फंजीसाइड, हाँ,
1: जी जी
0: कवकनाशी या
1: हाँ
0: फफूंदनाशी या
1: हाँ हाँ
0: फंजीसाइड,
1: जी
0: तो इसका प्रयोग करने से काफ़ी हद तक अगर नए पौधे में पता लग जाए जल्दी
1: जी
0: तब तो इसका नियंत्रण हो जाता है।
1: जी
0: इसके
1: जी
0: अलावा जो है कुछ रोग और लगते हैं
1: जी
0: जिसमें फलों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, कई बार हमने देखा तनों में जो है जाले निकल आते हैं, तनों
1: हाँ
0: में जाले निकल आते हैं, उसके अंदर तनों को खोखला करने वाले, तनों के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, उसको खा खा के पौधा नष्ट कर देते हैं, तो उनका भी आक्रमण कभी कभी
1: होता है।
0: देखा गया है।
1: जी। तो
0: तो
1: इनके नियंत्रण के लिए भी दवा आप
0: जी
1: जी
0: दवा, लेकिन दवा डालने से पहले किसान भाई से एक विशेष सलाह है कि किसी वैज्ञानिक से सलाह ले लें, कई
1: जी
0: बार दवाएं ज़्यादा पड़ जाती हैं तो नुकसान हो
1: जी
0: जाता है।
1: एक और समस्या मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कि बरसात में जो अक्सर जो फल आते हैं अमरूद में, उसमें कीड़े जरूर हो जाते हैं
0: जी
1: और वो फल भी बहुत मीठे नहीं होते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा अच्छा टर्म है, बाहर नियंत्रण आप कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी जी जी
1: तो क्या है ये बाहर नियंत्रण? तो बाहर तो वातावरण में आता है,
0: जी
1: यहाँ कैसे बाहर नियंत्रण
0: हाँ
1: करते
0: जी, ये
1: हैं?
0: आपने बहुत अच्छा उठाया, ये अमरूद की खेती में एक विशेष चीज़ है, ये सभी फलों से हट के है।
1: जी
0: बाहर माने फूल का खिलना, जैसे
1: जी
0: बसंत ऋतु,
1: जी
0: वैसे जब भी फूल आता है अमरूद में तो उसको हम लोग कहते हैं बहार।
1: जी
0: इसमें तीन बहार होती है,
1: हाँ
0: एक अंबे बहार जब आम में फूल आते हैं माने फरवरी मार्च में,
1: जी
0: दूसरा है मृग बहार माने जून जुलाई में फूल आते हैं,
1: जी
0: और तीसरा है हस्त बहार। तो तीन बहार में अगर तीन बार फल लेंगे अमरूद के बगीचे से तो
1: हाँ
0: सीधा सा पौधा कमजोर हो जाएगा और फल की गुणवत्ता घट जाएगी, उपज कम हो जाएगी।
1: जी
0: तो हम लोग ये एक सलाह देते हैं, तकनीक है यही, हम पहले चर्चा किए वैज्ञानिक तकनीक,
1: हाँ
0: इसमें दो बहार को हम कम कर दें, एक बहार को ज़्यादा ले लें,
1: हाँ हाँ
0: जिसमें ठंडी वाले फल जो है सबसे अच्छे होते हैं,
1: हाँ
0: मीठे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी में अमरूद के भाव 50 रुपये किलो
1: हाँ
0: और बरसात में 10 रुपये किलो,
1: हाँ
0: तो उस समय बीमारियां कम लगती हैं। तो
1: जी
0: हमें जो है ठंडी वाली फसल को बढ़ाना चाहिए,
1: जी
0: बरसात वाली फसल को कम करना चाहिए, तो इसी विधि को बोलते हैं बहार
1: तो
0: नियंत्रण।
1: कैसे बरसात वाली फसल को कैसे रोकेंगे?
0: अब इसमें दो तीन तकनीकें अपनाना है, एक तो बरसात माने जून जुलाई में फूल आते हैं, इनके फल मिलते हैं हमारे नवंबर दिसंबर में, तो हमें ये करना है कि मई और अप्रैल के महीने में या तो पानी रोक दें बगीचे में,
1: हाँ
0: हल्का सा सूखा हो जाए तो
1: हाँ
0: अपने आप पत्तियां गिर जाएंगी और पौधे में फूल जून जुलाई में नहीं आएगा,
1: हाँ
0: एक। दूसरा, कई बार हम लोग यूरिया जो है ज़्यादा कंसंट्रेट, ज़्यादा गाढ़ा उसका 10% अगर घोल डाल दें
1: हाँ
0: किसी भी पौधे में, तो
1: जी
0: आप देखेंगे तीसरे दिन पौधे पत्तियाँ
1: तो गिर
0: गिरा
1: जाए
0: देंगे,
1: जी
0: ये तरीका है। तीसरा है कुछ हार्मोन है जिसमें इथेरल है, NAA है, इनका अगर प्रयोग कर दिया जाए तो जो है पत्तियां गिर जाएंगी और फूल जो है जून जुलाई का कुल मिला के हमें फूल को रोकना है,
1: जी
0: जून जुलाई के फूल को ज़्यादा बढ़ाना है
1: हाँ
0: और उधर वाले
1: हाँ
0: को
1: जी
0: रोकना है,
1: फरवरी मार्च वाले को रोकना है
0: रोकना है
1: ताकि बरसात में फल ना
0: फूल।
1: आए।
0: हाँ, बरसात में फल ना आए,
1: हाँ
0: बरसात में फूल आए जो
1: हाँ
0: कि फूल हमारे फल देंगे
1: जाड़े में
0: अक्टूबर नवंबर में
1: जी जी जी
0: दिसंबर में।
1: तो किसान भाइयों ये ध्यान रखें आप कि अगर जाड़े में अगर अमरूद की अच्छी फसल लेनी है तो बरसात के फल का आपको मोह छोड़ना पड़ेगा, बरसात में आप फलों को त्याग दें और इसके लिए जो भी आवश्यक दवाएं हैं या तो जल कम कर दें ताकि पत्तियां गिर जाए या फिर कुछ दवाएं डाल दें ताकि या यूरिया बहुत ज़्यादा डाल दें ताकि बरसात में आपको फल ना मिले और इससे पौधे मजबूत होंगे और जाड़े की जो फसल होगी वो अच्छी मिलेगी।
0: इसका लाभ मिलेगा।
1: जी। तो डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र जी आप स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी दी अमरूद के विषय में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई, अभी हमने डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र से जाना अमरूद की खेती से भरपूर उत्पादन लेने की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण सिंह।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीण लोक में आपका स्वागत है। आइए अब जान लेते हैं मौसम के हाल और बात करते हैं।

हैं आज के तापमान की, तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस वहीं अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से भारी बरसात होने की संभावना है। और दोस्तों आइए अब आनंद लेते हैं पति पत्नी की इस प्यारी सी नोकझोंक का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक बहनों और भाइयों, आप सभी को पूनम जैन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, आज सबसे पहले आपके साथ मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपनी एक सहेली के घर गई, तो भाई उससे अपने बच्चे को डांटता पाया। थोड़ी देर बाद जब मैंने उससे डांटने का कारण पूछा तो बोली, क्या बताऊं, मेरे बेटे का जो ध्यान है ना, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। थोड़ी देर किताबें जो है वो खोलता ज़रूर है, पर तुरंत ही उसका मन उचाट हो जाता है। उससे किताब से कोई पाठ पढ़ने को या समझने को बोलो तो सीधा सा जवाब, अरे किताब में क्या ढूंढना, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पर मिलता है ना, बस हर समय तैयार चीज़ें उन्हें चाहिए। एक क्लिक में जो चीज़ मिल जाए वही उनके लिए ज्ञान की चीज़। भाई आजकल के बच्चे जो है ना, वो खुद से तो मेहनत नहीं करना चाहते, और इसीलिए ना कोई नोट्स बनाना चाहता है ना ही कुछ याद रखना। साथियों, अपनी सहेली की बात से मैं समझ चुकी थी कि ये जो परेशानी है ना, आजकल बहुत से लोग झेल रहे हैं, और मैं जानती भी हूँ इसका मूल कारण, और वो है कि हमारे आजकल के बच्चों की किताबों से दूरी। साथियों, आजकल के तकनीकी युग में हर चीज़, हर ज्ञान विज्ञान चुटकियों में ही उन्हें ऑनलाइन मिल जाता है, और इसीलिए बच्चे किताबों को खोलना चाहते ही नहीं। भाई एक दौर हमारा भी था जब किसी भी विषय को लेकर हम कई कई किताबों से जानकारी खोजते थे, फिर अपने शब्दों में उन किताबी शब्दों को मिलाकर अपने नोट्स तैयार करते थे। कौन सी जानकारी किताब के कौन से पाठ में मिलेगी उसे खोजते रहते थे, जानकारियों को याद रखने की कोशिश करते थे ताकि सवाल पूछने पर उसका जवाब तुरंत ही दे सकें, और इसीलिए शायद आज भी पुरानी पड़ी हुई कई बातें, कई फॉर्मूले हमें आज भी याद हैं। पर अगर बात करें आजकल की, तो भैया 2-4-6 मोबाइल नंबर तक अब याद नहीं रहते हमारे बच्चों को। हाँ, बेशक दुनिया में कितनी भी तकनीकी तरक्की हो जाए, कंप्यूटर मोबाइल पर कितनी भी जानकारी हो, पर पुराने समय से लेकर आज तक के डिजिटल युग तक किताबों में लिखे शब्दों की जगह कोई ले ही नहीं सकता। बेशक इंटरनेट के ज़रिए साथियों ज्ञान पाना बहुत आसान हो गया है, पर किताबों के पन्नों को पलटने और पढ़ने के एहसास की जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। इसके ज़रिए हम न केवल नई नई चीज़ें सीखते हैं, बल्कि एक बेहतर और संवेदनशील इंसान भी बनते हैं। हमें याद है साथियों कि किस तरह से बचपन में पढ़ी कविता कहानियों को पढ़कर, उनके पात्रों से जुड़कर हम कभी हंसते थे तो कभी दुखी भी हो जाते थे, और किताबें पढ़ने में इस कदर मशगूल हो जाते थे कि कई बार खाने पीने का ध्यान तक नहीं रहता था। पर हमारी जो कल्पनाशीलता है, एकाग्रता है, याददाश्त थी ना, वो भी 100% बढ़ती थी, जो कि आजकल के डिजिटल गैजेट्स यानी डिजिटल चीज़ें दे ही नहीं सकती। और इसीलिए किताबों को हमेशा से ही हमारे जीवन की सच्ची मार्गदर्शक और सच्ची मित्र माना गया है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेरणा देती हैं, हमें सही दिशा दिखाती हैं। और सच भी यही है कि एक अच्छी पुस्तक हमारे सोचने के नज़रिए को बदल देती है और हमारा संपूर्ण विकास करती है। अब साथियों, भैया देखिए, किताबों के बारे में बात करते करते हम इतने खो गए कि हम आज का सवाल भी नहीं पूछ पाए आपसे। तो भैया आज का सवाल है कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा शिकारी कीट है जिसकी विशेषताओं पर हेलीकॉप्टर तकनीक भी आधारित है। अब भैया आपको

शायद ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर हम है ना, इसीलिए सही जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए कार्यक्रम से। और अब फिर से लौटते हैं श्रोताओं किताबों की दुनिया में, जिनसे गुजरना जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों से गुजरने जैसा है। क्योंकि भाई अच्छी किताबों का अगर साथ मिल जाए ना, तो उससे बड़ा सुख और क्या होगा। और ये सुख कैसा होता है, किसी भी पुस्तक प्रेमी से आप पूछ कर देख लीजिए। और इसीलिए साहित्यकार निर्मल वर्मा हैं, वो कहते हैं कि किताबें मन का शोक, दिल का डर या अभाव की हूक कम नहीं करती, सिर्फ सबकी आंखें बचाकर चुपके से दुखते सिर के नीचे सिरहाना रख देती हैं। और न केवल वर्तमान बल्कि अतीत की घटनाओं के साथ भविष्य को संवारने का रास्ता भी दिखा देती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको लिए चलते हैं किताबों की रूमानियत से जुड़े उस परिवेश में, जहाँ गाने गुनगुनाने का जरिया भी यही किताबें हुआ करती थीं।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मजदूर मंडल में और आपके साथ मैं हूँ पूनम जैन। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे पुस्तकों की हमारे जीवन में अहमियत के बारे में, जो वाकई हमारे लिए हर बदलते परिवेश में एक सच्ची पथ प्रदर्शक और मित्र साबित होती है। हाँ, ये बात भी सही है साथियों कि भाई समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है, पर हमें इन बदलावों के साथ अपनी अच्छी आदतों और अच्छी चीज़ों से भी हमेशा ही जुड़े रहना चाहिए और उन्हीं को अपनाते हुए परिवेश के बदलते तरीकों के साथ हमें कैसे सामंजस्य बैठाना है, इसी पर विस्तार से आज रोशनी डाल रहे हैं रिंकू चक्रवर्ती।
4: परवरिश के बदलते तरीके। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा, जब बच्चे अपने माता पिता और गुरुजनों से डरा करते थे। आज के बच्चे हाजिर जवाब है, समय बदल चुका है। पहले सिर्फ बच्चों की शारीरिक सेहत पर बल दिया जाता था, पर अब बच्चों पर कई शोध करने के बाद पता चला कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी शारीरिक सेहत जितना ही जरूरी है। हम सोचते हैं कि बच्चों को तनाव नहीं होता, ये परेशानी सिर्फ हम वयस्कों की है, पर असल में ऐसा नहीं है। बच्चों में भी पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का डर, करियर की चिंता और माता पिता के अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के तनाव शामिल है और ये समस्या आज के समय बढ़ती ही जा रही है। पर इस समस्या का समाधान भी है, जिसकी पहल माता पिता को करनी होगी। अच्छे खान पान के साथ बच्चों को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देना जरूरी है, ताकि बच्चे अपनी समस्याओं से अकेले जूझने के बजाय उन्हें अपने माता पिता से साझा करें, अपने मन की बात उन्हें बताएं। बच्चों के साथ माता पिता की नियमितता बोलचाल बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों से बात करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर बच्चे आपसे कोई बात साझा करते हैं तो उनके ऊपर भरोसा दिखाएं कि आपको यकीन है कि आपका बच्चा कोई गलत

काम नहीं करेगा। बच्चों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हम उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें सुलझाने में उनका साथ देंगे। बच्चे से हमेशा माता-पिता की तरह व्यवहार न करके कभी-कभी दोस्तों जैसा व्यवहार भी करना इसमें हमारी मदद कर सकता है। उनके शौक का हिस्सा बनकर, उनकी बातें ध्यान से सुनकर, उन्हें अच्छी सलाह देकर हम बच्चों के करीब आ सकते हैं, पर हमें उनकी सामान्य गलतियों नज़रअंदाज नहीं करनी है, बल्कि बच्चों को प्यार से उनकी गलती का एहसास कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे चलकर बड़ा रूप ले लेगी। इसमें एक और अहम बिंदु ये है कि हमें अपने घर के माहौल को सकारात्मक और शांत रखना होगा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल, कॉलेज से, काम से घर आते तो शरीर और मन दोनों को ही आराम की ज़रूरत है। और घर का माहौल अगर खुश और शांत है तो घर आकर आराम महसूस होगा। नहीं, अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, परिवार के लोगों में मनमुटाव रहेगा, तो इसका नकारात्मक असर बच्चों पर पड़ेगा। बच्चों को ये समझाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कि सब काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते हैं। जीवन में हार जीत लगी रहती है। जरूरी नहीं कि बच्चा हर बार अव्वल आए। बच्चों को हार भी सकारात्मकता के साथ स्वीकारना सिखाना पड़ेगा, पर हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। आज से कल को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहना है। बच्चों में किसी काम को करने की रुचि है भी या नहीं, ये भी देखें। अक्सर हम देखते हैं कि माता-पिता जो सपने खुद पूरे नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें पूरा करेंगे। ये बात गलत नहीं है, पर अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोप देना गलत है। आपके कहने पर बच्चा हो सकता है कि आपके बताए रास्ते पर चले, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसे वो काम पसंद आए ही या सफलता मिले। बच्चों को उनका करियर चुनने पर दबाव न बनाएं, उन्हें अपनी रुचि अनुसार राह चुनने दें। हो सकता है जो आप सोच बैठे हैं आपका बच्चा उससे भी कोई अच्छा काम कर जाए और सबके लिए मिसाल बन जाए। बच्चों पर भरोसा दिखाएं। हाँ, उन्हें जो राह अपने लिए चुनी है उसमें वो सफल होंगे ही, बशर्ते उन्हें ईमानदारी के साथ बड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। साथ ही बच्चों को अनुशासन सिखाना भी बहुत जरूरी है। आज वैसे ही बच्चों पर पढ़ाई और परीक्षाओं का बहुत दबाव है। फिर घर में माता-पिता भी हर समय बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं, पर हम सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या कोई भी व्यक्ति पूरे दिन एक ही काम कर सकता है? उत्तर होगा नहीं। हम लोग भी काम करते करते थक जाते हैं और अंतराल चाहिए होता है। वैसे ही बच्चों को भी पढ़ाई से अंतराल देने चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई के साथ ही बच्चों के शारीरिक मानसिक सेहत भी ज़रूरी है। याद कीजिए अपने दिनों को, जब आपके माता-पिता आपको पढ़ने के लिए कहते होंगे पर आपका दिमाग सिर्फ खेल में लगता था। वैसे ही आपके बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा समय खेलने, कूदने और घूमने को भी दें। पर हाँ, आजकल के बच्चों में फ़ोन की लत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, या फिर यूँ कहे कि हमें फ़ोन की लत लग गई है, क्योंकि बच्चे हम ही से तो सीखते हैं। बच्चों का पहला स्कूल और गुरु उनके अभिभावक ही होते हैं। बच्चों में अच्छे बुरे व्यवहार और आदतों की नींव घर से ही पड़ती है। हमें उनके सामने अपनी छवि को मजबूत और संवेदनशील दिखाना है। जो गुण उनके अंदर चाहते हैं, पहले उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना होगा। अगर हम अपना व्यवहार सही रखेंगे, अपने काम को लेकर अनुशासित रहेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, बच्चों बखुद हमें देखकर प्रेरित होंगे। साथ ही कभी कभार बच्चों के साथ खुद को भी बच्चा बनना पड़ेगा। उन्हें पढ़ाई से छुट्टी देकर उन्हें कहीं घुमाने ले जाना, उनके साथ समय बिताना, खेलना, कूदना, बातें करना, उनके नज़रिए को समझना, उनके दोस्तों की बातें करना, इसका एक और फायदा ये होगा कि आपका बच्चा अपने दोस्तों के बारे में बताएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका बच्चा कैसी संगति में है। बच्चों को सबके सामने डांटे नहीं, चाहे वो दोस्त हो

0: या रिश्तेदार। जैसे बच्चे की गलती पर उन्हें समझाया जाता है, वैसे ही कोई अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करें, उन्हें उपहार दें, साथ ही बच्चों को अच्छी आदतों के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे संतुलित आहार, व्यायाम, समय पर जागने और सोने की नियमितता और भावनात्मक स्थिरता। अगर आपको लगता है कि तमाम बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी आपका बच्चा तनाव से नहीं निकल पा रहा है, तो हो सकता है कि उसकी समस्या गंभीर हो। ऐसे में घबराएं नहीं और किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर समस्या का समाधान खोजें। यदि आप बच्चों के अभिभावक के साथ साथ दोस्त भी बन जाते हैं, तो बच्चा हमेशा आपकी बात सुनेगा और मानेगा। उसके साथ बातें करें, खेले कूदे, गप्पे मारे, पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तकें दें, शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ें और उसे सुनाएं। इन छोटे छोटे उपायों से आपका बच्चा अच्छे रास्ते पर चलेगा और आपका नाम रोशन करेगा।
1: श्रोताओं, अभी रिंकू चक्रवर्ती ने अपनी वार्ता परिवेश के बदलते तरीकों के ज़रिए बताया कि भाई किस तरह से पुराने और नए परिवेश के तरीकों के बीच एक बैलेंस बनाकर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। चर्चा अभी जारी है, पर आइए उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अभी हम बात कर रहे थे जिंदगी के बैलेंस की, और भाई यही बैलेंस यानी कि संतुलन बनाती है हमारी प्रकृति भी। साथियों, बारिश के मौसम में मच्छरों की वजह से होने वाले मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग हर बार अपना अभियान चलाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रकृति ने भी मच्छरों से बचाने के लिए अपना एक अनोखा प्रहरी तैयार कर रखा है। तो चलिए भाई, आज ज्ञान सागर में बात करते हैं इसी प्रभावी कीट शिकारी ड्रैगन फ्लाई के बारे में। और भाई, यही है जवाब हमारे आज के सवाल का भी। भाई, तालाबों में, दलदलों में, नदियों, नहरों के आसपास उड़ने वाली ये जो ड्रैगन फ्लाई हैं, ये मच्छरों की संख्या भी नियंत्रित करती हैं, साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। वैसे तो ये हमेशा ही रहती हैं, यानी पूरे साल भर ही रहती हैं, पर मानसून के दौरान जल भराव की वजह से हरियाली और अनुकूल वातावरण मिलने से इनकी जो संख्या है, इनकी जो गतिविधियां हैं, वो ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। और ऐसा मानते हैं कि एक वयस्क ड्रैगन फ्लाई रोज 100 से 500 तक मच्छरों का शिकार कर सकती है। वहीं इसके जो जलीय शिशु हैं यानी छोटे शिशु, वो पानी में रहने वाले मच्छरों के लार्वा यानी कि अंडों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित करते हैं। यानी कि बड़े और बच्चे सभी अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाते हैं, और ये खास तौर पर एनोफिलीज और क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों का शिकार करती हैं, जो कि बीमारी के मुख्य कारण हैं। और हवा में उड़ते हुए शिकार को पकड़ने की जो क्षमता है, इसकी वजह से ही इन्हें कुशल शिकारी माना जाता है। और भाई देखिए, इनसे जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि ये आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे यानी कि सभी दिशाओं में उड़ सकती हैं। और उसके ऊपर भी एक खास बात और, वो ये कि एक ही स्थान पर स्थिर रहकर भी ये उड़ान भर सकती हैं। और उनकी इसी विशेषता से वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर की होवरिंग तकनीक को समझने और विकसित करने की प्रेरणा भी ली थी।

इसके अलावा कुछ और भी विशेष प्रजातियां हैं जो कि लंबी दूरी तक तय कर सकती हैं और समुद्र पार करने की क्षमता भी रखती हैं। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से हमारी प्रकृति हर चीज़ में संतुलन भी बनाती है और हर समस्या का निदान भी देती है। बस ज़रूरत है हमारे आपके समझने की और जागरूक रहने की। भाई, इसी तरह की जागरूकता चाहिए साथियों अपनी सेहत के प्रति भी, ख़ास तौर पर इन दिनों के बारिश के मौसम में। सबसे ज़रूरी क्या है? मच्छरों को रोकना। तो भाई, इसके लिए घर के कोनों में कपूर या नीम की पत्तियां जलाकर धुआं करें, इससे कीड़े दूर भागते हैं। इसके अलावा नीम के तेल में पानी मिलाकर खिड़कियों और दरवाज़ों पर स्प्रे करने से भी मच्छर अंदर नहीं आएंगे। और भाई, खिड़कियों में अगर जाली लगी है तो और भी अच्छा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको पता ही है, मच्छरों को रोकने का जो तरीका है वो है घर में और घर के आसपास सफाई रखना। और ये सारे उपाय अपनाकर आप सभी आने वाले सावन का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए, बुलाते हैं सावन को इस गीत के ज़रिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।

0: ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगी। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड NHPC ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित NHPC तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जाँच की जाएगी। NHPC ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। NHPC ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस की मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak on the second consecutive day. The Lok Sabha and the Rajya Sabha each witnessed 3 adjournments due to opposition's uproar when both the houses reassembled at 2:00.

जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे अस्तित्व से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न है। हम सभी ने महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से मौसम का मिजाज बदला है। कहीं बेमौसम बारिश, कहीं असहनीय गर्मी, तो कहीं अचानक बाढ़। ये सब जलवायु परिवर्तन के ही संकेत हैं। लेकिन क्या हम इन परिवर्तनों को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु क्या है। मौसम के कई वर्षों का औसत किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करता है। इसी तरह किसी स्थान पर अल्पकाल में वायुमंडलीय दशाओं का योग, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, बादल आदि की स्थिति ही मौसम है। सरल शब्दों में जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत मौसम की घटनाओं में होने वाला दीर्घकालिक बदलाव है। यह बदलाव प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, लेकिन आज जिस जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, जो न केवल मानव समाज को बल्कि संपूर्ण धरती को अनियंत्रित ढंग से प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है हरित गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन। हम अपने उद्योगों, वाहनों और बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में जमा होती हैं, और ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है, और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग ही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसके अलावा वनों की कटाई भी बड़ी समस्या है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें काटते हैं तो यह प्रक्रिया बाधित होती है और वायुमंडल में कार्बन का स्तर बढ़ जाता है। कृषि पद्धतियां जैसे धान की खेती और पशुधन से निकलने वाली मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भी लोगों के जीने के तौर तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। विश्व भर की सड़कों पर वाहनों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में काफी अधिक योगदान दिया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि यह समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से विचार करने का है। अब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी जरा समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का हम पर और हमारी धरती पर क्या असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुआयामी हैं और हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। हम लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देख रहे हैं। यह न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि कृषि उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। पिघलते ग्लेशियर, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि जैसे बाढ़, सूखे और तूफान तथा चक्रवातों में वृद्धि, बदलता मौसम, अनियमित बारिश कृषि पर भी प्रभाव डाल रहा है। जैव विविधता का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई प्रजातियां बदलती जलवायु के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई स्थानों पर सूखा और बाढ़ की स्थितियां प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं। इसी तरह से आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ जा रहा है। सन 2022 में जलवायु संबंधी आपदाओं ने लगभग 33 करोड़ लोगों को आंतरिक विस्थापन पर मजबूर किया, जो 2008 के स्तर की तुलना में 41% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह मौसम संबंधी खतरे जैसे बाढ़, तूफान, जंगल की आग और सूखा के कारण भी विस्थापन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रति वर्ष कम से कम 1,50,000 मौतों के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है, और यदि यह स्थिति नहीं बदली तो यह संख्या 2030 तक दोगुनी हो सकती है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी वास्तविकता है जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और हमारी तैयारी कैसी है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने और उससे निपटने के लिए मुख्य तौर पर 2 रणनीतियां हैं। पहला न्यूनीकरण और दूसरा अनुकूलन। न्यूनीकरण का तात्पर्य समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ताकि जलवायु परिवर्तन की गति को रोका जा सके या धीमा किया जा सके। इसके लिए हमें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना चाहिए, वनारोपण तथा वनों की सुरक्षा, टिकाऊ कृषि पद्धतियां तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। ये सभी कदम ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर लिए जाने चाहिए। सरकारों को मजबूत नीतियां बनानी होगी, उद्योगों को अपनी प्रक्रियाओं को बदलना होगा और हम नागरिकों को भी अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। दूसरा उपाय है अनुकूलन। न्यूनीकरण के साथ साथ हमें उन परिवर्तनों के लिए भी तैयार रहना होगा जो पहले हो चुके हैं या होने वालों हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के तहत हमें आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, जल संरक्षण प्रबंधन

0: जलवायु, कृषि, बुनियादी ढांचों का लचीलापन, सड़कों, पुलों और भवनों को इस तरह डिजाइन करना जो चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकें, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना तथा जन जागरूकता और शिक्षा के प्रसार पर जोर देने की आवश्यकता है। अनुकूलन का अर्थ है कि हम अपनी जीवन शैली और बुनियादी ढांचे में इस प्रकार बदलाव लाएं ताकि हम जलवायु परिवर्तन के साथ न्यू नॉर्मल अर्थात नए सामान्य के साथ रह सकें। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की है। हालांकि चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी हैं, परंतु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर में लोग और सरकारें अब जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को समझ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। पेरिस समझौता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और विभिन्न देशों द्वारा निर्धारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के परिणाम स्वरूप ओजोन छिद्र में सुधार का उदाहरण यह प्रमाणित करता है कि वैश्विक सहयोग से जलवायु परिवर्तन रोका जा सकता है। अनुमान है कि 2040 तक ओजोन परत पूर्ववत हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। भारत सरकार भी जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु कई कदम उठा रही है। इस प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिनमें 8 प्रमुख मिशन शामिल हैं, जिसमें प्रमुख हैं ऊर्जा, सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, कृषि, पर्यावरण, स्थिरता आदि। ये योजनाएं एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं कि हम जलवायु संकट से कैसे निपट सकते हैं। अब व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? मित्रों, यह सोचना गलत है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम बिजली बचाएं, पानी बचाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करें, अपने आसपास पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकिल को बढ़ावा दें, जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें, नीति निर्माताओं पर दबाव बनाएं और अपनी सरकारों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की मांग करें। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि न्याय और समानता का भी मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं, जिनकी इसमें सबसे कम भूमिका होती है। इसलिए हमें एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करना होगा जो सभी के लिए न्यायसंगत और टिकाऊ हो। हमें आशावादी रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि सामूहिक प्रयासों से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह सिर्फ हमारी पीढ़ियों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने का सवाल है। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। याद रखिए, जलवायु परिवर्तन हमारी साझा जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस ग्रह को बचाने के लिए अपना योगदान दें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन और हमारी तैयारी। वार्ताकार थे डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा।

लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में 3 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने

0: लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दी गई। श्री खन्ना ने बताया कि 3 अगस्त से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
1: राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगा।
0: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें राज्य के उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5% छात्राएं इसकी पात्र होंगी।
2: इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्क ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख वार्षिक से कम होगी। साथ ही छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, वाराणसी में 500 बेड के अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास, अग्निशमन तथा आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए के प्रस्ताव, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश की नई पहचान बनाई है।
4: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
5: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के

0: और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, मंदिर के सीईओ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: भगवान श्री रामलला मंदिर के छावा विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य अयोध्या पहुंचने लगे हैं। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कल होने वाली बैठक के मद्देनजर एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने आज बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही झमाझम वर्षा किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटा दी है और मौसम को भी पूरी तरह सुहावना कर दिया है। कुछ दिनों पहले वर्षा के अभाव में किसानों की बोई गई खरीफ की फसल उर्द, मूंग, तिल, अरहर, ज्वार की फसलें सूखने की कगार पर पहुंचने लगी थी, लेकिन मानसूनी वर्षा ने फसलों को जीवंत कर किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटाने का काम कर रही है। हालांकि कहीं कहीं जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को उषा सिंह का प्यार भरा नमस्कार।

ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। साथियों, भारत विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का देश है। देश के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग पहचान और धार्मिक मान्यताएं हैं। पूर्वोत्तर भारत का सुंदर राज्य त्रिपुरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं प्रमुख त्योहारों में खारची पूजा का विशेष स्थान है। यह त्रिपुरा का एक प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है, जिसे हर वर्ष बड़ी श्रद्धा, उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। खारची शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत है। सामान्य रूप से माना जाता है कि इसका संबंध पृथ्वी की शुद्धि और पापों के निवारण से है। इस पूजा के माध्यम से पृथ्वी माता तथा देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है और समाज की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये त्योहार लोगों को प्रकृति के प्रति सम्मान और स्वच्छता का संदेश भी देता है। खारची पूजा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होती है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है। इस दौरान त्रिपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक अनुष्ठान, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य आयोजित किए जाते हैं। राज्य के लोग नए वस्त्र पहनकर पूजा में भाग लेते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साथियों, इससे आगे की बात हम करेंगे इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा में होने वाली खारजी पूजा के विषय में। साथियों, खारजी पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है। इसका संबंध त्रिपुरा के प्राचीन राजाओं और जनजातीय परंपराओं से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि त्रिपुरा के राज परिवार ने इस पूजा को विशेष संरक्षण दिया था। समय के साथ ये उत्सव पूरे राज्य का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व बन गया। आज भी ये परंपरा उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। खारजी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष 14 देवताओं

की पूजा है। इन देवताओं को त्रिपुरा के रक्षक देवता माना जाता है। पूजा के अवसर पर इन देवताओं की मूर्तियों या प्रतीकों को मंदिर से बाहर लाया जाता है। उन्हें पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा फूल, चंदन, धूप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद विधि विधान से उनकी आराधना की जाती है। राज्य तथा जनता के कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। साथियों, अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा में होने वाली खारची पूजा के बारे में। साथियों, खारची पूजा का सबसे प्रसिद्ध आयोजन अगरतला के निकट स्थित चतुर्दश देवता मंदिर में होता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और पूजा के साथ विशाल मेले का भी आयोजन होता है। मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, बांस और बेंत से बनी वस्तुएं, पारंपरिक आभूषण, कपड़े तथा स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाती हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। खारची पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर उत्सव में भाग लेते हैं। इससे आपसी प्रेम, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। ये त्योहार नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से जोड़ने का कार्य भी करता है। खारची पूजा का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु त्रिपुरा आते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों, हस्तशिल्प कलाकारों और छोटे व्यापारियों की आय में वृद्धि होती है।

राज्य की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को भी पहचान मिलती है। ये त्योहार प्रकृति और पृथ्वी के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। खारची पूजा लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। आज के समय में ये संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। खारची पूजा त्रिपुरा की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये उत्सव परंपरा, संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक एकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। 7 दिनों तक चलने वाला ये पर्व लोगों के जीवन में आनंद, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही ये हमें अपने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने, प्रकृति की रक्षा करने और समाज में प्रेम एवं सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की उषा सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा कुछ ही क्षणों में।

आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित

कार्य सूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दो

0: दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा, तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

0: लैंड पॉट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। कार्यक्रम का पहला गीत है LOC कारगिल फिल्म से, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाजों में फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्द रचना है समीर की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है जोशीले। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है आरडी परमन ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रेमचंद्र वडाली और प्यारेलाल वडाली की आवाजों में। फिल्म का नाम है तनु वेड्स मनु। संगीत दिया है राजेश खार ने।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण

0: पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
5: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने

0: बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की

0: ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately. But now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demand.

0: Afghanistan's National Disasters Management Authority to support affected communities in the wake of the floods in Nuristan. In a social media post, External Affairs Minister said India stands with the Afghan people at this difficult time. The benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. We have a report.
1: The Sensex declined 238 points or 0.3% to close at 77,470. The Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. In the forex market today, the rupee appreciated by 21 paisa to close at 96 rupees and 24 paisa against the US dollar. With Ayushi's report, Sarabji Kaur for Akashwani News.
0: Hockey India has announced the 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. Chief coach Craig Fulton is confident that the selected squad has a bright chance to write its own chapter in the Indian hockey history. India, drawn in Pool D alongside England, Pakistan and Wales, will play all their pool stage matches in Amstelveen, Netherlands. India will begin their campaign against Wales on the 15th of August. And in China Open badminton, India's HS Pranoy's campaign ended in the opening round after losing to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. Devika Sehag lost to Thai player Busanen Ong Bamrung Phan in the women's singles draw. Ace Indian shuttler PV Sindhu will face compatriot Unnati Huda in the opening round of the 32 clash of women's singles tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protest. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential-level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strike for the 10th day in a row, mounting tensions over the Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the men's World Cup set to begin next month. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र

0: सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलात पर नारेबाजी कर रही थीं। रखना अंदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात और वक्फाए सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालिका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहाँ दाखिल जख्मी मुजाहरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही है। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, जियाफत और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोरदाना डॉवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थी।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग

0: पर चर्चा।
1: हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इतिहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इतिहाद जैसी भारत की क्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया।

0: से एहतजाज के दरमियान यकसां सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यकसां सिविल कोड यूसीसी के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में एनएचपीसी हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेर तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर आजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकायक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंभों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान एनडीआरएफ की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अबीद।
0: ईरान और अमेरिका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमेरिका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुरमुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमेरिका ईरान तनाजे पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज एमवी गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें जाये हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी

0: और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले एफआईएच आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमना हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदे महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Money Talk। This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on strengthening India's infrastructure base, core industry growth with investment potential. The participants are Dilip Chinoy, economic analyst, and Sarabjit Kaur, anchor.
2: Hello listeners, today we bring you an important economic update on the Index of Core Industries ICI based on the new base year 2022-23. This marks a significant step in improving the accuracy and relevance of India's economic indicators. The revised series reflects the latest structure of the economy and provides a more up-to-date measure of the performance of the country's core industries, which play a vital role in industrial growth. To understand this in detail, we are fortunate to connect with Mr. Dilip Chinoy, former Secretary General, FICCI. Mr. Dilip, welcome to the discussion.
3: Thank you for having me.
2: Sir, to begin the discussion and for the benefit of our listeners, we'd like to know from you what exactly is Index of Core Industries and why is it considered one of the most important high-frequency indicators of India's economy?
3: So very simply put, the Index of Core Industries tracks the monthly performance of India's crucial infrastructure industries that are essential for economic activity. With the updated series, which is using this base year 2022-23, it now includes 9 core industries: crude, coal, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, which is a new addition, cement, electricity, and iron ore. These sectors actually provide vital inputs for manufacturing, construction, transport, and services. And since these sectors actually make up approximately 41% of the index of industrial production, any changes in their output can signal shifts in industrial activity. And since these data relating to coal, crude oil, natural gas, etc. are available prior to the other items in the index of industrial production, this is kind of an early indicator of industrial activity and shifts in industrial activity and overall economic momentum. That is why government, the Reserve Bank, businesses, and financial markets actually keep a close eye on the index as a leading indicator of growth trends.
2: Taking cue from what you said, Mr. Chinoy, that this is a monthly data and it is an early indicator of economic momentum. But if you could please explain to us, what was the need to revise the base year from 2011-12 to 2022-23? What does a change in the base year achieve in this series?
3: So whenever you have an index, right, and if you have an index that reflects a particular

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सकें?
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बायो इकोनॉमी से हमारा लाइक रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
2: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो चार क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल

0: एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायोप्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, इसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो। कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी। बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैविक कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैविक कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिम्युलेंट्स और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, जैसे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आप अगर यूज करके, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
1: औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं। तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायोफ्यूल की भी आपने बात करी, बायोप्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
0: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में, मैं जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बायोफ्यूल का बात कर ले, बायोगैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स, हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है, अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी। उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा, और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
1: जी, आपने जैसे औद्योगिकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया था बायोप्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायोप्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
0: तो डेफिनेटली जब हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है, फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है, जिसमें आप मटेरियल की बात करें कौन सा मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में, तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से ज्यादातर चीजों में वो चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है, और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशन को प्रमोट किया जाए जो आपकी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें।
1: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है, अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर GDP यानी अर्थव्यवस्था में जो GDP का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
0: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ GDP बायो

0: इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही हैं। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी को।
1: जी मतलब 2014 में जो सिर्फ 10 अरब डॉलर का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन 195 अरब डॉलर तक पहुंच गए। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी। और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेजिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
0: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी हैं और कोशिश किया जा रहा है कि पराली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायो पेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में। बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
1: आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खासतौर पर इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पर बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
0: बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
1: जी वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं? इसे
0: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
1: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या लक्ष्य बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं?
0: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से

0: प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं। पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको, आपका ये प्रयास है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या, मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवा स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है लखनऊ केंद्र से खेल दर्पण कुछ ही क्षणों में।

0: दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं नमित राज, और प्रस्तुति है आकाशवाणी नजीबाबाद की। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष्क कुमार से भेंटवार्ता, और साथ ही आप सुनेंगे इस हफ्ते के प्रमुख खेल समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का ये सफर बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में निर्णायक गोल दागा स्पेन के फेरान टोरेस ने। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया, जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 गोल दागे। तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार के विश्व कप में पहली बार कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया, जो अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और 27 रनों से ये मुकाबला हार गई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार 138 रनों की शतकीय पारी खेली। इस मैच में हरफन मौला खेल दिखाने वाले जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने 91 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। वहीं जो रूट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 31 वर्षीय पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इस बार की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17-23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस 30वें संस्करण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी 5 श्रेणियों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2009 के बाद पहली बार भारत में वापसी कर रहा है। भारतीय दल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के नेतृत्व में 10 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 19 एवं अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। 51 किलोग्राम भार वर्ग में चंद्रिका भोरेश पुजारी और प्राची ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 23 महिला वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वहीं पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता रहे 50 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और

0: और मुक्केबाज गंगा ने 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी, जबकि सोर्ड मराइन मुख्य कोच की भूमिका में रहेंगे। विश्व कप के लिए उसी टीम को चुना गया है जिसे कुछ दिन पहले एशियाई खेलों के लिए चुना गया था। कुश्ती में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में नेहा सांगवान ने 59 किलो और काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अंतिम पंघाल मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इन खेलों में 126 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों को जानने के बाद आइए कार्यक्रम खेल दर्पण के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर खेल के मैदान में देश का गौरव भी बढ़ाया। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं तरुण सहरावत। मैं एक नजुवाद तहसील के एक छोटे सा गांव पड़ता चमरौला
0: जी,
1: मैं उसका निवासी हूं। और मेरे फादर मुझे MBBS कराना चाहते थे। अब मेरी रुचि क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्र कंपटीशन था एथलेटिक्स का, तो महावीर PTI जी थे एक हमारे, तो मैं बोला सर मैं भी खेलने जाऊं। बोला नहीं नहीं पढ़ाई करो।
0: अच्छा।
1: मैं चला गया। अगले दिन मैं चुपचाप वहां जहां कंपटीशन होता वहां गया
0: जी।
1: तो मेडल तो नहीं आया वहां, कोई प्लेस नहीं आई, मगर PTI ने मुझे देख लिया, बोला इधर आ तू। मेरे 2-3 रैपट उसने साहब मारे।
0: अच्छा।
1: बस उसी टाइम ही पता नहीं क्या हुआ, मन ये किया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। गांव में नहर थी, नहर पे प्रैक्टिस करता था मैं
0: जी।
1: नहर पे प्रैक्टिस कर करके मैं अपना जिला स्तर का कंपटीशन खेला, वहां मेडल आए। फिर मंडल स्तर 4 जिलों में खेला, वहां मेडल आए। तो ललक ये थी कि बस इंडिया खेलना। उस टाइम पे PTUSA भागती थी
0: जी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या थी?
1: छोटा था, 6th class में था।
0: 6th class में थे आप, और 6th class में आपने PTUSA,
1: हाँ
0: PTUSA को देख के शुरू
1: हाँ,
0: किया था।
1: हाँ PTUSA जी थी, उनके मेरे पापा उनकी कहानियां सुनाते थे
0: जी।
1: तो बस यही उन्हीं की देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, कोच नहीं मिला, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा। स्टेट चैंपियन में गए, वहां से मैं फिर जूनियर नेशनल में मेडल दिया
0: जी,
1: उसमें गोल्ड था। फिर यूनिवर्सिटी आया खेलने के लिए, जब इंटर हो गया वहां से मेरा सिल्वर मेडल था।
0: तरुण जी, खेलों की दुनिया से निकल कर आप सेना में भर्ती हुए
1: जी,
0: ठीक है, तो जो सेना का अनुशासन था
1: जी,
0: वो कितना काम आया खेलों में?
1: सर, जब हम फौज के अंदर गए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि यार इनडिसिप्लिन टाइप रहता सिविल आदमी। जब हम वहां गए, हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी किया
0: जी,
1: और ट्रेनिंग में ये पता चला कि यार ये जो हम एक डिसिप्लिन में बॉडी रखते हैं, ये हमारे माइंड को भी फोकस करता, हमारी बॉडी को भी फोकस करता, तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते।
0: अच्छा, जैसे सेना में आप थे तो एक तो सेना की ड्यूटी होगी, एक आप खेल भी खेल रहे थे, तो दोनों को मैनेज कैसे करते थे?
1: ड्यूटी तो कभी कभी देनी पड़ती थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट्समैन अगर ड्यूटी देगा ज्यादा तो फिर प्रैक्टिस में मेडल नहीं ला पाएगा। फिर भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री सो रहे थे, हम ड्यूटी भी देते थे, कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जो हम कर सकते थे। और हमारे जो बड़े सीनियर थे, कोचेस थे, उन्होंने यही सिखाया था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो
0: खोना पड़ता जी।
1: तो ये चीज़ें तो नॉर्मल थी कि ड्यूटी वगैरह ये तो नॉर्मल हो जाती है, मगर एक मेडल लाने के लिए जो हमारा संघर्ष था वो कड़ा था जी। उसमें डाइट फोकस हो जाता, उसकी मेहनत हो जाती, कभी कभी ऐसा होता कि इंजरीज आ जाती हैं, कभी

0: मेस्टिंग खिंच जाना,
1: जी
0: कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे क्या होता था, डिस्टरबेंस तो होता था एक खिलाड़ी को।
1: जी अच्छा, आपने तरुण जी इंजरीज के बारे में बात की, चोट भी लग जाती है, तो ऐसे में हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होने लगता
0: बिल्कुल
1: है,
0: सर।
1: तो उससे कवर अप कैसे करते हैं अपने आप को?
0: सर जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी हमें भी हो जाती है,
1: जी
0: और होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं कुछ वर्क,
1: अच्छा
0: जैसा अभी हैमस्ट्रिंग खींचने का मैटर हो जाता है कि भैया तुमने उस पर ज़्यादा लोड कर दिया इसलिए वो खींची, और एक कोई भी मसल खींचने के लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने के लिए।
1: जी
0: हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत एकदम, यार मेरा कंपटीशन आ गया। मैं भी स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि वो मेहनत करने वाला बंदा होता है, रेस्ट कैसे करे,
1: बिल्कुल।
0: अंदर से इतना दर्द होता है कि वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ होता
1: अच्छा,
0: रहता है।
1: एक चीज और होती है कि जैसे एक तो अगर हम कंटिन्यू किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया 10-5 दिन का, तो
0: जी
1: वो भी बड़ा फर्क
0: बहुत
1: हो
0: सर,
1: जाता है।
0: वो फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग 10 दिन छूट चुकी है
1: हाँ
0: तो हम 3 महीने पीछे चले जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: उस बॉडी को कवर करने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक लगना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी उस जर्नी की जब तक आप सेना में रहे,
0: जी
1: तो रिटायरमेंट क्यों लिया था?
0: सर, इसका एक मेन कारण ये था कि जब मैं कभी इंडिया लेवल या फिर बाहर खेलना जाता था तो अपने
1: जी
0: क्षेत्र का बच्चा बड़ा कम निकलता था,
1: अच्छा।
0: तो मुझे ऐसा लगा यार मैं अगर मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेंशन मेरी मिलने लगी है,
1: जी
0: तो यार मैं चलता हूँ और अपने क्षेत्र के बच्चों को निकालने का काम करूँगा।
1: अच्छा।
0: जी मैंने उसी के खातिर NIS किया, योगा कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया कि मैं एक जब बच्चों को सिखाना जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो जो प्रॉपर मैं उसको फेस करा सकूँ।
1: NIS का आपने जिक्र किया, NIS के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना
0: जी
1: चाहेंगे?
0: सर, NIS होता है एक अच्छा कोच बनाने के लिए,
1: अच्छा।
0: उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि आपका कई सारे इवेंट मिलते हैं उसमें जो एथलेटिक्स के, जैसे एथलेटिक्स वाला NIS कर रहा है या फिर कुश्ती में कर रहा है या फिर किसी और इवेंट में कर रहा है, अलग
1: जी
0: अलग इवेंट के अलग अलग होते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है पूरी तरीके से कैसे हम बच्चों को फेस करा दें।
1: अच्छा।
0: हाँ जीरो से बिल्कुल एकदम, जब लास्ट में 1 साल हो जाता है, टेस्ट होते रहते हैं बीच में, 1 साल का होता है या पटियाला होता है, ग्वालियर होता है, कोलकाता में भी होता है, तो मैंने जो किया था वो पटियाला किया था।
1: अच्छा।
0: पढ़ाई भी बढ़िया होती है वहाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हर एक टेस्ट को पास करना पड़ता है।
1: तो जैसे आपने कहा कि जो खेलों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं
0: जी
1: उनके लिए ये कोर्स होता है,
0: यस
1: तो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें?
0: सर,
1: कौन?
0: अभी तो इसमें कैटेगरी रख दिया कि आपका नेशनल में मेडल होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
1: अच्छा,
0: जी
1: मिनिमम क्वालिफिकेशन
0: हाँ,
1: नेशनल
0: नेशनल में
1: का।
0: मेडल,
1: जी
0: या फिर आप कोई ऐसा ओपन नेशनल खेल रहे हो जो हाई लेवल की गेम है और आपका मेडल भी नहीं आया, क्वालिफाई भी कर दे तो भी आप खेल सकते हो।
1: अच्छा।
0: इसके लिए शॉर्ट भी है, 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स भी है NIS का, उसको कर सकते हो, उसमें भी प्लेटफॉर्म है।
1: यानी जो प्रशिक्षण वहां पे प्राप्त कर रहे हैं इनका भी फिटनेस टेस्ट
0: बिल्कुल
1: होता
0: सर,
1: होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा, इस दौरान ही आपका जो ये खिलाड़ी वाला सफर था, जो आप
0: जी
1: बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो ये भी चलता रहा कंटिन्यू
0: यस
1: साथ में,
0: जी
1: तो थोड़ा सा वहां का अनुभव हम जानना चाहेंगे कि आपने
0: जी
1: एशियन गेम्स में परफॉर्म किया और वहां पे सिल्वर मेडल आपको प्राप्त हुआ,
0: जी
1: कैसा लगा ये उपलब्धि पाकर?
0: सर, मैं जब खेलने के लिए गया तो अनुभव ये रहा कि मैंने ये देखा कि यार हमारे इंडिया से बाहर का कंट्रीज का वहाँ एक तो टेक्निकल फेस ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और दूसरा वहाँ के कोच अव्वल दर्जे के हैं। हमारे इंडिया में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या ना कि माहौल नहीं मिल पा रहा,
1: अच्छा।
0: दूसरा ट्रैक नहीं मिल पा रहा किसी फील्ड पे जाने के लिए। अभी मैंने एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है
1: जी
0: जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस एथलेटिक्स की, एथलेटिक का फिजिकल फिटनेस होती है वहाँ,
1: अच्छा।
0: जब आप अच्छे लेवल का फिजिकल फिटनेस करोगे तभी तो किसी गेम में जाओगे,
1: हाँ बिल्कुल।
0: उसका टेस्ट होते रहते हैं स्किल टेस्ट, स्पोर्ट्स के रनिंग के हों चाहे फिर किसी भी चीज़ के हों, तो फिर डिसाइड होता है कि भैया इसको इस गेम में उतारा जाए, 100% रिजल्ट देगा।
1: तो क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप वहाँ, क्या क्या कराते हैं बच्चों को?
0: सर मैं वहाँ बच्चों को एथलेटिक्स का ऑल गेम कराता हूँ,
1: जी
0: जितने भी गेम है, चाहे वो जैवलिंग हो, लॉन्ग रेस हो, 100 मीटर हो, हर्डल्स हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, सबका हम बढ़िया से उनको
1: जी
0: इवेंट वाइज जो

0: प्रैक्टिस कराते हैं, दूसरा फिजिकल फिटनेस बहुत अव्वल दर्जे का। हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जो अभी फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की हो गई
1: अच्छा,
0: या आर्मी की हो गई, उनको भी तैयार करते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, जो बड़े बच्चे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट खेलने जा रहे हैं, या जिला स्तर में गोल्ड मेडल है, जो स्टेट में मेडल है, नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे भी हमारे पास हैं।
1: आगामी अगस्त में
0: जी
1: आपका सिलेक्शन हुआ है दक्षिण कोरिया में
0: जी
1: वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी?
0: सर, काफ़ी ज़्यादा तैयारी उसके लिए मेरी, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे में वर्क कर रहा हूँ सर। बिजनौर हमारा भी कच्चा ट्रैक है, वहाँ से मुझे स्पीड वर्कआउट करने के लिए, हर्डल्स वर्कआउट करने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ता है मेरे को। हफ्ते में 3 डेज एक सेक्शन मैंने रखा इवनिंग का, मैं यहाँ से बिजनौर से 11 बजे निकलता हूँ और फिर हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करके, और फिर मैं ट्रैक पर 3 बजे या 4 बजे जाता हूँ, 8 बजे मैं वर्कआउट करके फिर वापस आना पड़ता है बिजनौर।
1: अच्छा, ये डेली का डेली का
0: हाँ,
1: रूटीन
0: हफ्ते
1: है
0: में
1: आपका,
0: 3 दिन
1: हफ्ते में 3 दिन?
0: जी।
1: अच्छा।
0: और उसमें क्या ना, देखो ऐसा ना, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत खर्च होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आपके शूज़, आपके स्पाइक्स, आपकी किट महंगी आती हैं बहुत, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं हमारे पास
1: जी।
0: कि उनको डाइट नहीं मिल रही, मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट है। तो हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा जिला स्तर में या फिर मंडल स्तर में मेडल आता है स्टेट स्तर में, उनको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई डाइट प्रोवाइड करा दो, क्या क्या खाना, जैसे एक साईं की डाइट चलती है प्रॉपर फेस में, उनको दिलाओ, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैक अच्छा होना चाहिए।
1: सही बात है, प्रतिभा देखिए हर क्षेत्र में है, लेकिन सही गाइडेंस की जरूरत है और सही सुविधाओं की जरूरत है। एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है कि जैसे आजकल बच्चे स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं खिलाड़ी, तो वो कितना सही है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं बॉडी पे?
0: सर, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है,
1: जी।
0: मैं भी सोचने वाला था, इसको बताने वाला था। ये जो एक अभिशाप है स्पोर्ट्स में, हमारे बच्चे जो ये स्टेरॉयड वगैरह ले रहे हैं ना, दे कौन रहे आप, पहले तो ये जो स्टेरॉयड, अगर ये सक्सेस होता तो भारत सरकार क्यों बंद करती इसको? ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे स्पोर्ट्स को ख़त्म कर रहा है
1: खत्म कर रहा
0: जी। तो ये बहुत गलत है और मैं इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूँगा कि ना हो। अच्छी अपनी डाइट खाओ, घर का खाना बहुत अच्छा खाओ, ट्रेनिंग स्मार्ट तरीके से करो।
1: जी। तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, जड़ पे काम करना जरूरी है। कोई भी समस्या तभी खत्म हो सकती है जब हम उसकी
0: बिल्कुल
1: जड़ पर काम करें।
0: जी
1: एक लास्ट क्वेश्चन
0: जी जी
1: और मैं लेना चाहूँगा कि जैसे हमारा क्षेत्र बिजनौर है,
0: जी
1: छोटा जिला है
0: जी
1: और प्रतिभा की कमी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: तो अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप?
0: मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई कि गलत राह पर चलो मत, और भैया मेहनत करो। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे स्टेरॉयड का, उसे तो यूज ही मत करो, उसको यूज करोगे आपके फेफड़े, आपके लीवर, ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो बस, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है सर। साथ में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, हमारा जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो मैंने उस यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूँ, और हर गांव गांव जाके
1: अच्छा।
0: पेरेंट्स को समझाया जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ, तो इस चीज़ का फेस कर रहे हैं। दूसरी बात ही जो अभी बताई थी हमने कि भैया स्टेरॉयड नहीं लेना, उस पर भी हम विचार करते हैं और घर वालों को भी समझाते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बच्चे जो हैं, माँ बाप परेशान हैं उनसे कि यार
1: जी
0: हमारे सुनते नहीं हैं।
1: जी मतलब ये ऐसे युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि जैसे जो एक तो बेरोजगार हैं,
0: हाँ
1: पढ़ाई
0: यस
1: लिखाई कम की
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: और ज़्यादातर नशेखोरी की तरफ बढ़
0: यस
1: रहे हैं।
0: यस। अगर हमारा यूथ सही चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा जो समाज की ग्रोथ बदलेगी, सभ्यता चेंज होगी, हमारे अगली पीढ़ी मजबूत होगी
1: अगली पीढ़ी मजबूत होगी।
0: जी।
1: बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिमिनेलिटी भी बढ़ेगी।
0: यस बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: तरुण जी, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया और अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना है कि आपके मार्गदर्शन में और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
0: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भाग लेने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण में आज हमारे साथ हैं युवा

0: कबड्डी खिलाड़ी तनिष। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष।
1: धन्यवाद सर।
0: तनिष, भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय सीरीज हुई थी कबड्डी की, उस कबड्डी टीम के आप प्लेयर हैं, लेकिन सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो चाहेंगे।
1: सर, मैं मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज नजीबाबाद जिला बिजनौर का स्कूल का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। मुझे 8th क्लास से ही कबड्डी खेलने का शौक हो गया था। स्कूल में बहुत से लड़के कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में डर लगता था कबड्डी से कि मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए, डर लगता था इस वजह से।

0: स्कूल में बहुत से लड़के कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में डर लगता था कबड्डी से कि मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए, डर लगता था इस वजह से। फिर जब मैं उसमें फोकस करा तो फिर मेरा डर भागा। फिर हमारे स्कूल में GIC वर्सेस MDS के स्कूल के टीम का मैच हुआ और हमने उसमें पहला स्थान पाया। जब से मुझे बहुत शौक लगा कबड्डी खेलने का।
1: अच्छा तनिष, कबड्डी खेलने का आपको शौक है और आपने, जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि स्कूल लेवल से आपने शुरू किया और 8th क्लास से शुरू किया, तो ये जो द्विपक्षीय सीरीज हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताइए।
0: सर मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेन कबड्डी प्लेयर मेरा दोस्त विवेक है,
1: अच्छा
0: तो उसने मुझे बताया हापुड़ में ट्रायल चल रहे हैं,
1: जी।
0: वहाँ पर एक कोच थे अरुण कुमार सर, उन्होंने ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन के होने के बाद मेरा इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं राइट कॉर्नर रहा हूँ।
1: तनिष, टूर्नामेंट में जैसे हम गए नेपाल, तो आप पहली बार इंडिया से बाहर गए होंगे,
0: यस सर।
1: कैसा महसूस हुआ?
0: सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया में पहली बार गए, इंडिया से बाहर जाते ही जब बॉर्डर से गुजर रहे थे कुछ अलग सी फील आ रही थी
1: अलग
0: सर।
1: सी फील आ रही थी, डर भी लग रहा होगा।
0: जी सर जी।
1: अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए थे दोनों टीमों के बीच में?
0: सर 2 मैच हुए थे, वो तीन, सॉरी सर, तीन तीन
1: 3 मैच हुए
0: जी,
1: थे।
0: जिसमें 2 मैच जो जीत जाती है उसका फाइनल था।
1: अच्छा,
0: जी सर।
1: यानी 2 मैच नेपाल ने जीते और 1 मैच
0: जी
1: इंडिया
0: सर।
1: ने जीता। अच्छा, कबड्डी का आपको शौक है
0: जी सर।
1: तनिष, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को और कबड्डी को कैसे मैनेज करते हैं?
0: सर सुबह में मैं रनिंग करने जाता हूँ, जो कि मेन है कबड्डी के लिए,
1: जी।
0: कि जिसकी वजह से सांस ना फूले। 40 मिनट का गेम होता है कबड्डी का। और शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने ग्राउंड पे जाता हूँ, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ 3 घंटे। 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को करीबन 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे लोग पढ़ाई करता हूँ।
1: अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी कोच के अंडर में कर रहे हैं?
0: सर कोच के अंडर में मैं JD अकेडमी में करता था, पर अभी गर्मी की वजह से मैं वहाँ पर नोएडा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से घर पर ही कर रहा हूँ।
1: तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आगामी जो 1-2 साल में अपने आप को, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफी कम है तनिष, तो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
0: सर बस इंडिया की तरफ से खेलने का सपना है मेरा सर, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है।
1: इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है। चलिए, थोड़ा सा हम अपनी बात को आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए, जो भी श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं तनिष,
0: जी
1: तो वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि खिलाड़ी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की मेहनत आपकी कैसी रही। तो जब आपको पता चला कि आप द्विपक्षीय सीरीज जो नेपाल के साथ इंडिया की हुई उसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद तैयारी के लिए कितना वक्त मिला था आपको?
0: सर मुझे करीबन 1 महीने के समथिंग मिला था, जिसमें मैंने अपने पूरे 100% दिया। सुबह भी शाम भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं। फिर मैंने सर थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ाई रोक दी थी।
1: अच्छा।
0: जी सर। फिर मेरे क्लास टीचर बोल रहे थे तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये वो है। मैंने सर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रहे हैं, सर ने चलो कर लो। हमारे PTI सर हैं आलोक सर, वे भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए।
1: अच्छा, तो पूरी तैयारी की, आपको 1 महीने का समय मिला, उसका पूरा आपने सदुपयोग किया
0: जी
1: और
0: सर।
1: जी जान मेहनत की। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो एक टूर्नामेंट की बात रही, इसके अलावा आपने कुछ मंडल स्तर पे खेला हो या नेशनल
0: जी सर
1: वगैरह
0: जी।
1: खेला हो?
0: हाँ सर, हमारे स्कूल से स्कूल की टीम गई थी सर, वहाँ से किरतपुर, किरतपुर से नांगल जट, नांगल जट से अमरोहा, अमरोहा में जाकर मंडल स्तर खेलता है अमरोहा में, तो अमरोहा में जाकर अमरोहा की टीम फाइनल हुई थी। पर उसमें मेरा सर सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पर कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैं जा नहीं सकेगा।
1: मंडल स्तर के लिए।
0: जी
1: अच्छा तनिष, जैसे देखिए कबड्डी का जो ये गेम है, इसमें
0: जी
1: चोट भी काफी लगती है,
0: जी सर।
1: तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ऐसी चोट लगी कि आपने सोच लिया छोड़ ही दूं कबड्डी
0: जी
1: को?
0: सर, इंजरी की बात मैं स्कूल में ही बता रहा हूँ। मैं स्कूल में बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था
1: अच्छा।
0: जी सर, तो मेरे गोड़ में इंजरी आई थी बहुत तगड़े वाली, तो मैंने ये तक बोल दिया था आज के बाद कबड्डी नहीं खेलूंगा। फिर
1: अच्छा।
0: सर 3 दिन बाद फिर दोबारा खेलने चालू कर दी। फिर 3 दिन बाद जिन बच्चे ने मेरी इंजरी कर दी थी, उन बच्चों के ऊपर ही टैकल पॉइंट करे मैंने।
1: बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमारा, कि इंजरी को हमने बहाना नहीं बनाया कोई, और उससे हम उभर कर वापस आए। एक बात मेरे जहन में अभी आ रही है कि कबड्डी ही क्यों?
0: सर कबड्डी शुरू से फेवरेट स्पोर्ट्स है। छोटा सा था मैं सर, करीबन मान के चलो 9 साल तक का, तो मेरी एक दीदी है वहाँ पर, तो उनके समूह के समथिंग जो ना मैं सानपुर, ये यहाँ
1: जी
0: पर कबड्डी खेलना,
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: से
1: जी
0: ही फर्स्ट आया था प्राइस मैंने।
1: अच्छा।
0: जब से और भी ज़्यादा लगन लगी, फिर स्कूल में कबड्डी खेलने लगी।
1: तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कबड्डी में
0: जी
1: आया, तो परिवार का कितना सपोर्ट है इसमें?
0: सर, परिवार का ही सपोर्ट है, पर घर वालों को भी डर लगता कि कहीं बच्चा चोट फिट ना खा ले, इसलिए पापा भी थोड़ा मना करते थे कबड्डी मत खेलो, पर मैंने फिर भी छुप छुप के खेली।
1: अच्छा।

0: एक कबड्डी का प्लेयर होने के नाते अगर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं, तो कबड्डी में अगर कोई सफल होना चाहता है बच्चा, तो क्या चीज़ जरूरी है सबसे ज़्यादा?
1: सर पहले फोकस करना, कबड्डी पे फोकस करो और अपनी मेहनत में लगे रहो। ये मत सोचो कि मेरे से खिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, पर एक दिन जरूर हो जाएगा जब मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है सर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट होते हैं, तो लंबाई का कितना फ़ायदा मिलता है?
1: सर लंबाई के लिए एक तो रेडर ही फायदा देता है, क्योंकि ग्राउंड अलग अलग टाइप के होते हैं। सीनियर का ग्राउंड लंबा होता है, जूनियर ग्राउंड छोटा होता है, तो रेडर का फायदा लंबाई से बहुत ज़्यादा होता है कि
0: अच्छा,
1: रोकना मुश्किल हो जाता है रेडर को।
0: रेडर को
1: जी
0: यानी लंबाई का कहीं
1: जी
0: थोड़ा सा
1: सर
0: इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है
1: जी
0: खेल
1: जी
0: पे।
1: सर जी
0: अच्छा, थोड़ा सा हम बात इस बारे में करेंगे कि जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका, वहाँ पे क्या कैसा माहौल रहता है, किस तरह से सिखाते हैं कोच? जैसे सपोज आप यहाँ पर थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कबड्डी के बारे में आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जाके आपका अनुभव कैसा रहा, कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, स्ट्रेटजी सीखने को मिली?
1: सर कोच हमारे मतलब हर चीज़ बताते थे। मुझे जो ना राइट कॉर्नर पर चैन मारने नहीं आती, जैसे बोलते हैं कि ट्रेडर को रोके कैसे जाए, मतलब कवर कवर की कोई गलती नहीं होती, कवर को दिखाना दिखाना होता है।
0: अच्छा
1: तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाई कैसे लगती है, अपने हाथ से हाथ पकड़ के सिखाई।
0: अच्छा
1: माई बेस्ट कोच मैं उन्हें मानता हूँ सर।
0: अच्छा एक बेहतर कबड्डी प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जो मतलब आप सोचते हैं कि
1: सर
0: एक एक खिलाड़ी को मिलनी ज़रूर चाहिए?
1: सर कबड्डी प्लेयर को तो ऐसी बात है सर, डाइट पर अपना फोकस देना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा
1: ये खेल जान का ही है। जब वो शरीर में जान नहीं होगी तो बेकार है खेलना।
0: तनीष, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। आपने आज बताया कि आपकी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन देखिए सपने बड़े होने चाहिए श्रोताओं, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए तनीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। आलेख एवं वाचन स्वर नमित राज का था और प्रस्तुतकर्ता थे अंकित सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार हुआ और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: खेल दर्पण।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं पंडित विश्वनाथ। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग पूरिया कल्याणमय ख्याल गायन। रचना विलंबित एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज ऐसो बना। द्वितीय रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं उन बिन कल ना परत। तबला पर संगत दे रहे हैं मम्मे खान। प्रस्तुत है राग पूरिया कल्याणमय ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में पंडित विश्वनाथ का पोरिया कल्याण राग में ख्याल गायन। रचना विलंबित एक ताल में निबद्ध थी। आज ऐसो बना जिसके बोल थे, और द्वितीय रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। उन बिल कलना परत है, तबला पर संगत कर रहे थे मम्मी खान। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी।